आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः अथ वार्ताः भारत उज्बेकिस्तान देशाभ्याम् अद्य खनन आयुर्वेद पर्यटनार्थिक सहयोग पर्यावरण उच्च शिक्षादि क्षेत्रेषु परस्पर सहयोग संवर्धनाय सन्धिपत्राणि हस्ताक्षरितानि देशद्वयेन त्रिंशदुत्तर द्विसहस्र वर्षं यावत् पञ्चार्बुद डॉलर मितं व्यापार लक्ष्यं निर्धारितम् यदि साम्प्रतिक व्यापारस्य पञ्चगुणितं वर्तते प्रधानमन्त्री

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
2: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला मुझे, तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, डीबीटी, सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
3: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। सम्मेलन से इतर संगठन के कई नेताओं से भी मुलाकात

0: देंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक विकास दर 7% या उससे अधिक रहने की संभावना। नेपाल में बाढ़ के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 794 हुई, 2500 से अधिक लोग अब भी लापता। अमेरिकी सेना ने होर्मुज जल डमरू मध्य में लड़ाक द्वीप पर ईरान के रॉकेट लॉन्चरों पर हमले किए। जवाब में ईरान ने पश्चिम एशिया में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। और दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने अपने आरंभिक मैच में थाईलैंड को 94 से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे कल राष्ट्रीय अध्यक्षों के सत्र में भी भाग लेंगे। श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर कल बिश्केक पहुंचे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिश्केक में सबसे पहले फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद करेंगे। इसके बाद वे महात्मा गांधी मेमोरियल पार्क जाकर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इस प्रतिमा का अनावरण श्री मोदी ने वर्ष 2015 की अपनी किर्गिस्तान यात्रा के दौरान किया था। प्रधानमंत्री आज शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के अनेक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इनमें आर्मेनिया, किर्गिस्तान और ईरान के राष्ट्रपति के साथ ही रूस के राष्ट्रपति के साथ होने वाली द्विपक्षीय बैठक भी शामिल है। श्री मोदी आज 6वें विश्व नॉमेड खेलों के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे। ये आयोजन मध्य एशिया की समृद्ध जीवंत सांस्कृतिक विरासत का उत्सव है। प्रधानमंत्री कल 1 सितंबर को शंघाई सहयोग संगठन की 26वीं बैठक को संबोधित करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए बिश्केक से मैं विकल्प शुक्ला।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा कल संपन्न हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव की बातचीत के अलावा इस यात्रा की कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां रहीं।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा के मायने 11 समझौतों पर हस्ताक्षर से कहीं बढ़कर हैं। महत्वपूर्ण खनिजों और यूरेनियम की सप्लाई से लेकर व्यापार, रक्षा, डिजिटल भुगतान और शिक्षा तक, हिंदी और संस्कृत से लेकर खेल और विरासत संरक्षण तक, इस 2 दिवसीय यात्रा ने भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को एक विस्तृत और व्यापक ढांचा प्रदान किया है। व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक संबंधों का बढ़ना, $5 अरब के व्यापार लक्ष्य को 3 साल के भीतर हासिल करने का संकल्प, दीर्घकालिक ऊर्जा सहयोग और राज्य एवं नगर स्तर पर अधिक सहभागिता से भारत की उज्बेकिस्तान के साथ दोस्ती को एक नई गति मिलने की उम्मीद है। यात्रा का एक शानदार पल तब आया जब राष्ट्रपति शौकत मिर्जियेव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राजकीय सम्मान ओली दराजली दोस्तलिक पुरस्कार प्रदान किया। ये पुरस्कार भारत उज्बेकिस्तान संबंधों और सहयोग को मजबूत करने में उनके योगदान को रेखांकित करता है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक विकास दर 7% या उससे अधिक रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के बाद के वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था ने जिस गति को हासिल किया है वो आगे भी जारी रहने की उम्मीद है। अमेरिका दौरे पर वित्त मंत्री ने शिकागो में भारतीय समुदाय से कहा कि भू राजनीतिक अनिश्चितताओं और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों के बावजूद भारत अपनी आर्थिक विकास की रफ्तार बनाए रखेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद त्रिशूली 3A सहित कई जल विद्युत परियोजनाओं की सुरंगों में फंसे सैकड़ों लोगों को निकालने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं।
4: भारत और चीन के विशेषज्ञों सहित बचाव दल सुरंग के अंदर फंसे लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। लापता 2500 लोगों में से सैकड़ों लोग नेपाल की जल विद्युत परियोजना के कर्मचारी बताए जा रहे हैं। बुधवार की इस आपदा में नेपाल में मृतकों की संख्या 794 हो गई है। तिब्बत में आधिकारिक तौर पर मृतकों की संख्या 16 है, जबकि 546 लोग लापता है। त्रिशूली नदी में फिर से बाढ़ के कारण मध्य नेपाल में एक झूलता हुआ पुल बह गया। पुल के बह जाने से गंडकी ग्रामीण नगर पालिका 7 और 8 के निवासियों का पृथ्वी राजमार्ग से संपर्क टूट गया है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: नेपाल में भीषण बाढ़ के कारण बिहार में गंडक और कोसी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नदी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए वाल्मीकि नगर बैराज के सभी 36 गेट और कोसी बैराज के 20

0: गेट खोल दिए गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटों में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है।
1: सोशल मीडिया पर चल रही भ्रामक खबरों के बीच सुपौल जिला प्रशासन ने कहा है कि कोसी नदी के जलस्तर में सामान्य गति से वृद्धि हो रही है और कोसी बैराज पूरी तरह सुरक्षित है। स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। वहीं जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण और गोपालगंज जिलों में प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है। जिला संसाधन विभाग ने इंजीनियरों को लगातार तटबंधों की निगरानी के निर्देश दिए हैं। सविता पारीख, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: उड़ीसा में आज एक बार फिर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है, क्योंकि उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बना मौसम राज्य को प्रभावित कर रहा है।
2: IMD ने कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश और कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश का अनुमान लगाया है। आज बरगढ़ के लिए रेड वार्निंग जारी की गई है, जबकि सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, देवगढ़, अनगोल, केउझर, सुवर्णपुर, नुआपड़ा, बलांगीर और कलाहंडी के लिए ऑरेंज वार्निंग है। IMD ने चेतावनी दी है कि भारी बारिश से संवेदनशील इलाकों में स्थानीय स्तर पर बाढ़, जल जमाव और नदियों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और उत्तराखंड में भी दिन के समय तेज बारिश होने की उम्मीद है। वहीं असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आज मूसलाधार बारिश हो सकती है। अमेरिका ने कल रात होर्मुज जलडमरू मध्य में लराक द्वीप पर ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमला किया। अमेरिकी सेना ने लराक द्वीप पर दो ईरानी लॉन्चरों को निशाना बनाया, क्योंकि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के सैनिकों को होर्मुज जलडमरू मध्य में समुद्री बारूदी सुरंगों वाले रॉकेट लॉन्च करने की तैयारी करते देखा गया था। ईरान के सरकारी प्रसारक ने खबर दी है कि इस हमले में कई ईरानी सैनिक और आम नागरिक मारे गए और घायल हुए। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने जॉर्डन में किंग हुसैन और अल अजराक अमरीकी ठिकानों पर हमला किया। भारतीय नौसेना आज मुंबई स्थित निस्तार श्रेणी के दूसरे गोताखोरी सहायता पोत DSV निपुण को शामिल करने जा रही है।
3: विशाखापत्तनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित पोत निपुण रक्षा पोत निर्माण में भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। निपुण एक विशेष पोत है जिसे गोताखोरी और गहरे समुद्र में अभियान सहायता के लिए तैयार किया गया है। यह आधुनिक गोताखोरी प्रणालियों और जलमग्न बचाव क्षमताओं से सुसज्जित है और समुद्र में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम करने वाले गोताखोरों को निरंतर सहायता प्रदान करने में सक्षम है। यह पोत पनडुब्बी बचाव अभियानों में भी भारतीय नौसेना की क्षमता को बढ़ाएगा। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT के संयुक्त दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर देश भर के 18 NIFT परिसरों से पास होने वाले छात्रों को डिग्रियां दी जाएंगी। पश्चिम बंगाल सरकार अभूतपूर्व कदम उठाते हुए जनता की शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए सरकारी कार्यालयों में जनता दरबार शुरू करने जा रही है। मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल ने जिला और ब्लॉक स्तर के जमीनी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे प्रत्येक मंगलवार और गुरुवार को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक जनता से मिलें। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से 2 सितंबर तक मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के दौरे पर रहेंगे। अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान वे शिवपुरी, कोलारस और पिछोर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पहले दिन वे अछरौनी और बामौर कला में स्वास्थ्य केंद्रों, बिजली उप स्टेशनों और एक उप तहसील कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने जीत के साथ शुरुआत की है। भारत ने थाईलैंड को 94 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 9 विकेट पर 159 रन बनाए। शिफाली वर्मा ने 64 रन की शानदार पारी खेली। थाईलैंड की पूरी टीम 15 ओवर और 3 गेंद में 65 रन पर सिमट गई। शिफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में कल एक सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार अलीपुरद्वार के रहने वाले 2 लोग मोटरसाइकिल से दार्जिलिंग घूमने आए थे। रास्ते में मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ गया और उसने सड़क पर चल रहे एक स्थानीय व्यक्ति को टक्कर मार दी। बाइक पर पीछे बैठे व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक चलाने वाले और स्थानीय व्यक्ति को गंभीर चोटें आईं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में बैंकिंग और क्रेडिट तक पहुंच के माध्यम से वित्तीय समावेशन बढ़ाने और नागरिकों को सशक्त बनाने पर ज्ञानवर्धक परिचर्चा प्रसारित करेगा।

0: कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0112331-0481, 0112331-4444। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हैं, नंबर है 9289094044। सवाल #AskAIR के साथ एक्स पर भी पोस्ट किए जा सकते हैं। ये आकाशवाणी है।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIR News हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है विशाल शर्मा।
2: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा के दौरान कई समझौतों पर हस्ताक्षर की खबर आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित की है। अमर उजाला लिखता है, लंबे समय तक भारत को यूरेनियम देगा उज्बेकिस्तान, 2030 तक सालाना द्विपक्षीय कारोबार $5 अरब पहुंचाने का लक्ष्य। रूस को पेट्रोल निर्यात करने वाला प्रमुख देश बना भारत, जनसत्ता की खबर है। पत्र लिखता है, भारतीय रिफाइनरी ने की पिछले 2 माह में रूस को करीब 10 लाख बैरल पेट्रोल की आपूर्ति। भारत द्वारा नेपाल को राहत सामग्री पहुंचाने से जुड़ा समाचार दैनिक जागरण ने सचित्र दिया है। पत्र लिखता है, नेपाल का सबसे भरोसेमंद मददगार बना भारत, 4 विमानों से 68.5 टन राहत सामग्री पहुंची, सुरंग बचाव विशेषज्ञ और फॉरेंसिक टीमें भी युद्ध स्तर पर जुटी। नक्सल मुक्त बस्तर को अब हथियार और विस्फोटक डंप फ्री करने में जुटी फोर्स, नारायणपुर के जंगल में राइफल बैरल ग्रेनेड लॉन्चर BGL विस्फोटक का डंप जब्त, राजस्थान पत्रिका की खबर है। देहरादून की गुनगुन ने कैंसर को हराकर सौंदर्य का ताज जीता। अहमदाबाद में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की सौंदर्य प्रतियोगिता P&I इंडिया 2026 का खिताब जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया, हिंदुस्तान की सुर्खी है। पत्र के अनुसार 2027 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व।
0: धन्यवाद विशाल। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। सम्मेलन से इतर संगठन के कई नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक विकास दर 7% या उससे अधिक रहने की संभावना। नेपाल में बाढ़ के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 794 हुई, 2500 से अधिक लोग अब भी लापता। अमेरिकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में लड़ाक द्वीप पर ईरान के रॉकेट लॉन्चरों पर हमले किए, जवाब में ईरान ने पश्चिम एशिया में अमरीकी ठिकानों को निशाना बनाया। और दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने अपने आरंभिक मैच में थाईलैंड को 94 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस: Prime Minister Narendra Modi arrives in Bishkek on a 2-day visit to Kyrgyzstan to attend SCO summit and meet several SCO leaders on the sidelines. Finance Minister Nirmala Sitharaman says India is likely to sustain economic growth rate of 7% or more in financial year 2026-27. Death toll in Nepal flash flood rises to 794, while more than 2,500 people still missing. U.S. forces strike Iranian rocket launchers on Ladakh Island in Strait of Hormuz. Iran attacks U.S. bases in West Asia in retaliation. And in women's cricket, India beat Thailand by 94 runs in their opening match of T20 Asia Cup 2026 in Dubai. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has arrived in Bishkek on a 2-day visit to Kyrgyzstan. He was received at the airport by Kasymaliyev Adilbek Alishovich, the chairman of the Cabinet of Ministers. A traditional Kyrgyz dance performance was also organized to welcome him.

0: 406.5 meters अर्थात 738 किलोहर्ट्ज पर और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये हैदराबाद केंद्र है। प्रस्तुत है आज का हिंदी कार्यक्रम। सभी श्रोताओं को सुरभि जैन का प्यार भरा नमस्कार। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम नारी की शक्ति और सहजता को नमन करते हैं। नारी की सहजता और उसकी आंतरिक शांति उसकी वास्तविक शक्ति और सम्मान के महत्वपूर्ण आयाम हैं। सहजता नारी के व्यक्तित्व को सरल, सुलभ और सौम्य बनाती है, जबकि शांति उसके विचारों और व्यवहार में संतुलन और स्थिरता लाती है। यही गुण उसे परिवार और समाज में एक सशक्त, संवेदनशील और प्रेरणादायक स्थान प्रदान करते हैं। नारी अपनी करुणा, धैर्य और आत्मिक दृढ़ता के माध्यम से न केवल अपने अस्तित्व को सार्थक बनाती है, बल्कि समाज में सम्मान और समरसता की भावना को भी सुदृढ़ करती है। तो श्रोताओं, इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत सुनते हैं सहजता और शांति, नारी शक्ति और सम्मान के दो आयाम पर एक चर्चा। इस चर्चा में सहभागी है श्रेया धोपाल, सरिता सुराना और इस चर्चा का संचालन कर रही हैं सीमा कुमारी। आइए सुनते हैं यह महत्वपूर्ण चर्चा। सहजता और शांति, नारी शक्ति और सम्मान के दो आयाम पर।
1: नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, सहजता और शांति। यानी ये दो ऐसे नारी शक्ति के आयाम हैं जिसपे नारी केवल शक्ति का ही प्रतीक नहीं मानी जाती है, बल्कि वो अपने भीतर जिस सहजता और शांति जैसे गुणों को समाये हुए है, संजोए हुए है, उसके माध्यम से वो समाज में संतुलन और समरसता कैसे स्थापित करती है, ये भी एक उल्लेखनीय पहलू है इस विषय वस्तु का। इस विषय पर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जानी मानी साहित्यकार एवं समाज सेविका सरिता सुराना जी, और उनके साथ हमारी चर्चा में सहभागी हैं श्रिया धोपोला जी, जो कि पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और कवित्री भी हैं। आप दोनों का हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सबसे पहले हम आप ही के पास आना चाहेंगे सरिता जी। सहजता, जैसे कि आप खुद भी बहुत ही सहज देखने में लगती हैं, तो ये कैसे नारी शक्ति का महत्वपूर्ण आयाम माना जाता है?
2: बहुत धन्यवाद आपका सीमा जी। सभी जो हमारे श्रोता गण है, मैं सभी का पहले अभिवादन करती हूँ। और जैसा आपने पूछा है कि सहजता ये कैसे एक नारी शक्ति का आयाम बन सकता है, तो मैं चार पंक्तियाँ यहाँ अपनी रखूंगी कि समता, ममता और सहजता नारी के नैसर्गिक आयाम। समता, ममता और सहजता नारी के नैसर्गिक आयाम। धरणी जैसा धीरज धरती, धरणी जैसा धीरज धरती, चलती रहती सदा अविराम, चलती रहती सदा अविराम। नारी शक्ति धुरी है परिवार, नारी शक्ति धुरी है परिवार की, सदा रखती है सबका ध्यान, सुख में दुख में, सुख में दुख में, विरह मिलन में, सदा रहती है एक समान, सदा रहती है एक समान। तो नारी शक्ति की जब हम बात करते हैं तो नारी के अंदर इतने नैसर्गिक और स्वाभाविक गुण विद्यमान है कि अगर हम उन्हें शब्दों में बांधना चाहें तो ये हमारे लिए असंभव सा प्रतीत होता है। नारी का जो सबसे महत्वपूर्ण आयाम, या महत्वपूर्ण हम कहेंगे कि जो भूमिका है, वो एक माँ के रूप में हमारे समक्ष आती है। तो उसकी अगर हम बात करें तो माँ के रूप में भी वही कि माँ जो है समता और ममता की प्रतिमूर्ति तो होती ही है, और समस्त गुणों को अपने अंदर समाहित करके पूरे परिवार को लेकर के जब सहजता की बात आती है तो सहज आदमी तभी रह सकता है जब वो अंदर से शांत हो, उसका मन शांत हो। तो ये दोनों एक दूसरे से जो है जुड़े हुए हैं, सहजता और शांति। हम यजुर्वेद का जो मंत्र हमेशा सुनते आए हैं कि द्यो शांति शांति रक्षित है, कि मतलब पूरे ब्रह्मांड में शांति हो, अंतरिक्ष में शांति हो, पृथ्वी पर शांति हो, तो ये तभी संभव है जब जो है मनुष्य के अपने अंतर मन में शांति हो। अंतर मन जब मनुष्य का शांत होगा तो उससे जो हमारे मस्तिष्क से जो किरणें निकल है, ब्रह्मांड में जो किरणें जाती है, जो हमारे विचारों की सकारात्मक किरणें वहां पहुंचती है, तो उसी से ही पूरा ब्रह्मांड जो है संचालित होता है, और उसी से ही कह सकते हैं कि वो सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।
1: जी,
2: तो नारी शक्ति में अगर ये दो गुण विद्यमान हैं तो मैं कह सकती हूँ कि स्वर्ग कहीं और नहीं, यहीं धरा पर ही।
1: जी, बहुत खूब। अच्छा श्रिया जी, अभी जैसे कि सरिता जी ने बताया कि सहजता कैसे नारी शक्ति का एक महत्वपूर्ण पहलू है, तो नारी की जो सहजता है उसकी व्यक्तित्व और निर्णय लेने की क्षमता को कैसे प्रभावित करती है?
3: जी।

0: सीमा जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ और सभी श्रोतागणों का धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी से नहीं बल्कि पुराने जमाने से ही नारी ने सहजता और सरलता के साथ निर्णायक होने की भूमिका निभाई है। क्योंकि नारी जो है, पहले उसका दायरा सीमित था, पहले वो घर और किचन तक ही सीमित थी, अब वो कार्यक्षेत्र में भी आगे बढ़ गई है। पर पहले भी घर के सारे जो जिम्मेदारियां हैं, जो घर के सारे काम हैं, उनको निभाने के लिए भी नारी ने निर्णायक होने की भूमिका निभाई थी। कि जैसे बहुत छोटे से काम, आज खाना क्या बनेगा, आज किस चीज की कमी है, क्या चीज आएगी, क्या मंथली बजट होगा, तो इन सब के लिए भी नारी ने पहले निर्णायक होने की भूमिका निभाई थी। और आज भी जब नारी कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ रही है, तो वो घर और बाहर दोनों के ही जो जिम्मेदारियां हैं वो अच्छे से निभा रही है। और सरलता से, सहजता से ही निर्णायक होने का जो ये संतुलन बना है, यह जो है नारी को कार्यक्षेत्र में भी आगे बढ़ा रहा है।
1: जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। जैसे इन्होंने अभी बताया, श्रेया जी ने, ये बात मतलब मैं भी इस बात से काफ़ी अपना वो रखती हूँ, रिलेशन रखती हूँ, क्योंकि हर चीज़, जैसे दिनचर्या जब शुरुआत होती है, जैसे कि क्या बनाना है, कैसे करना है, चाहे वो दोहरी जिंदगी ही क्यों ना जी रही हो, जैसे आज की गृहिणी सिर्फ आम गृहिणी तो है नहीं, वो बाहर भी कामकाजी महिला भी है, तो जब इस माहौल में अपनी शांति बनाए रखना, और जिसे शांति कहा भी जा सकता है कि नारी शक्ति का एक रूप है, शांति से काम करना या फिर शालीनता से काम करना, ये नारी के ही शक्ति के आयाम माने जाते हैं। तो इसे किस प्रकार से समझा जा सकता है सरिता जी, आज के संदर्भ में?
2: आज के संदर्भ में देखिए, अगर हम कहें तो पुरातन संदर्भ में तो हम सभी मानते ही हैं कि नारी शक्ति जो है पूर्ण रूप से, चाहे हम दुर्गा कहें या लक्ष्मी कहें, सभी अवतारों को है नारी शक्ति माना जाता है। और मेरा ऐसा मानना है कि उनका ही एक अंश हम सब के अंदर विद्यमान है। आज के संदर्भ में अगर हम बात करें तो अगर एक नारी सहज और शालीन और शांत नहीं होगी, शांत दिमाग से काम नहीं करेगी, तो परिवार में सामंजस्य बिठाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। घर हो या बाहर हो, आपको तुरंत उत्तेजित नहीं होना चाहिए किसी भी उसमें। हर तरह के वातावरण में अपने आप को ढालने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि कई बार स्थितियां, चाहे घर हो या बाहर ऑफिस हो, ऐसी हो जाती हैं कि जिनको जल्दी, हम कह सकते हैं कि गुस्सा आता है, उत्तेजना जिनकी जल्दी बढ़ती है। तो प्राणायाम, मेरे मेरे विचार से प्राणायाम जो है वो इसके लिए सबसे अच्छा जो है साधन माना जा सकता है। नियमित अगर हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं सुबह सुबह अपने लिए, मेरा यहाँ ये भी कहूंगी कि आप अपने परिवार के लिए सब कुछ करते हैं, ऑफिस के लिए भी सब कुछ करते हैं, लेकिन अपने लिए समय निकालें, कुछ समय अपने लिए निकालें। जब तक आप अपने लिए समय नहीं निकालेंगे, अपने आप को री एनर्जाइज नहीं करेंगे, मतलब वापस ऊर्जाइत नहीं करेंगे, तब तक ये शांति और सहजता की बात जो है आपके लिए संभव नहीं होगी। क्योंकि इंसान है, इंसान की प्रकृति है, तो हो सकता है अलग परिस्थिति में जो है आप ना भी चाहें, लेकिन कभी कभी हमें गुस्सा आ ही जाता है।
1: बिल्कुल
2: तो
1: सही है।
2: यहाँ सहजता वाली जब बात हम करेंगे, तो सहजता तभी होगी जब हम अपने मन पर कंट्रोल करेंगे। हमारे मन के द्वारा ही समस्त कार्य संचालित होते हैं, और मन तभी जो है हमारा शांत रहेगा जब हम अपने आप को थोड़ा समय देंगे, थोड़ा अपने आप को नव ऊर्जा से संचारित करेंगे। और उसके लिए प्राणायाम हो, चाहे योग हो, जो भी आप करना चाहें, जो भी आपको उपयुक्त लगे, तो उनका आप प्रयोग जो है अपने निजी जीवन में करें, तो उससे जो है आपको इन गुणों को लगातार बनाए रखने में सहायता मिलेगी।
1: जी बिल्कुल। श्रेया जी, आप तो कामकाजी महिला हैं, तो क्या, जैसे अभी सरिता जी ने उल्लेख किया ही है, लेकिन क्या शांति को कमजोरी समझना सही है? मतलब आपके विचार में ये जो वक्तव्य कहा जाता है नारी के लिए, ये सही है? आज के जो एआई का जमाना चल रहा है, काम महिलाएं कामकाजी हो रही हैं, मतलब आसमान से, जिसे हम बोलते हैं, जमीन से विज्ञान की उड़ान जो चल रही है, उसमें शांति को मतलब कमजोरी समझना उचित होगा?
0: शांति को कमजोरी समझना उचित नहीं होगा, पर अक्सर ये देखा गया है कि शांति को ही कमजोरी के साथ जोड़ा गया है। अगर आप कार्यक्षेत्र की बात करें, अगर कोई व्यक्ति शांत है, वह अच्छे से कार्य करता है, अपना पूरा 100% देता है, पर वो शांत है, वो अपने विचार व्यक्त नहीं कर पाता है, तो लोग हमेशा उसे कमतर आंकते हैं। अगर कोई व्यक्ति है जो 1% काम करके उसे 100% दिखा रहा है, तो लोगों को लगता है कि उसे बहुत आता है। तो ऐसा होता है कि हमें शांति के साथ साथ शक्ति का भी संतुलन बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। निर्णायकता की शक्ति होनी चाहिए।

0: बहुत जरूरी है ये कि हमारे अंदर निर्णायकता की भी शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि जमाना अब बदल चुका है। जैसे मैम ने दुर्गा का स्वरूप बताया, तो मैं इसमें ये कहना चाहूंगी कि जो नव दुर्गा के नौ रूप हैं, वो भी हमें यही बताते हैं, माँ शैलपुत्री से लेकर माँ सिद्धिदात्री तक शांति स्थिरता अपनी चरम ऊर्जा पर जाती है और फिर वापस संतुलन बना देती है। तो संतुलन होना बहुत जरूरी है, अगर ज्यादा शक्ति भी है तो भी वो हानिकारक है। जैसे अगर हम हवा को ही लेते हैं, अगर हवा जोरों से चलती है तो तूफान का रूप ले लेती है, अगर हवा चलना बंद हो जाए तो फिर ऐसा हो सकता है कि इंसान का जो जीवन है वो खतरे में आ सकता है। तो किसी भी चीज की अति नहीं होनी चाहिए, इंसान को शांति और शक्ति का संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है जीवन में।
1: मैं इसी विषय वस्तु पे आ भी रही थी, क्योंकि
0: जी
1: सरिता जी, जब बात मतलब अधिकता की होती है, कि किसी भी चीज की अधिकता जो होती है वो बुरी ही होती है, तो उस समय सहजता और शांति के साथ साथ दृढ़ता को कैसे नारी शक्ति का हिस्सा बनाया जा सकता है?
0: जी बिल्कुल आपने सही कहा, अति सर्वत्र वर्जे,
1: जी
0: ये
1: बिल्कुल
0: हम सभी जानते हैं। तो दृढ़ता जब तक आपके चरित्र में नहीं आएगी, जिसको हम आत्मसम्मान भी कह सकते हैं, दोनों बातें यहाँ पर आती है कि स्वाभिमान की रक्षा करते हुए ही हमें अपने गुणों को बनाए भी रखना है, जो हमारी नारी शक्ति के नैसर्गिक गुण हैं, शांति और सहजता, जो आपने दो आयाम बताए हैं, उनको बनाए रखते हुए दृढ़ता। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब आपने जो निर्णय लिया है वो किसी के दबाव में आकर के आप जो है उससे हट जाएं और अपना जो दृढ़ संकल्प है उसको त्याग दें। जब तक उसमें दृढ़ता और आत्मसम्मान की भावना नहीं आएगी, आप अपने स्वाभिमान पर कायम नहीं रहेंगे, तब तक आप उसको जो है क्रियान्वित नहीं कर पाएंगे। दृढ़ता का दूसरा नाम संकल्प हम कह सकते हैं,
1: जी बिल्कुल
0: संकल्प शक्ति। संकल्प शक्ति आपकी जो है वो मजबूत होनी चाहिए कि मैंने ये काम करने का जो है ठान लिया है, तो उसे अपने इन गुणों को बनाए रखते हुए भी हमें आगे बढ़ना है और अपनी जो है शक्ति का, अपनी योग्यता का परिचय देना है।
1: जी, यानी वो दृढ़ता जो है वो इस शांति और जो मतलब शक्ति है, जो सहजता है,
0: जी
1: उसमें और मतलब अधिक मात्रा में वो एक, जिसे हम संतुलन बनाना कहते हैं, वो समाज में संतुलन और परिवार में संतुलन बना के रखती है।
0: जी
1: जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई। लेकिन आप, जब आधुनिक जीवन शैली है, महिलाएं बाहर जा रही हैं, बहुत से ऐसी परिस्थितियां आ रही हैं जो उनके अनुकूल नहीं है, लेकिन उस समय में मतलब अपने इस गुणों को बरकरार रखना, सहजता और शांति को बरकरार रखना, ये बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो ये किस तरीके से प्रभावित हो रही है? मैं ये कहना चाहूंगी कि जब आप मान लीजिए किसी प्रतिकूल परिस्थिति में हैं एक महिला होने के नाते, और जहां पे आपको लग रहा है कि शांति जो है आपकी प्रभावित हो रही है, आपकी जो सहजता है उसको प्रभावित किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति से उबरने के लिए क्या किया जा सकता है? श्रेया जी, आपके विचार।
0: जी मेरा मानना है कि ऐसी स्थिति से उभरने के लिए, जैसे आपने कहा, शांति और सहजता, तो इसी में ये छिपा है कि हमें शांत रहना बहुत जरूरी है किसी भी निर्णय पे आने से पहले, क्योंकि अगर हम शांत नहीं रहेंगे तो हम निर्णायक ही नहीं बन पाएंगे। और ये जो गुण है हम महिलाओं से इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि महिलाओं में ममता की भावना ज्यादा होती है, इसलिए हमारे अंदर शांति भी बहुत ज्यादा होती है। तो ये जो गुण है ये हमें बनाए रखकर आगे चलने की आज बहुत आवश्यकता है। तो शांत होने के लिए पुरातन काल से ही, जैसे हमारे साधु संतों ने साधना का, योग का बहुत ज्यादा महत्व दिया है हमको, तो योग साधना, आजकल के मॉडर्न जमाने में अगर हम कहेंगे तो जिम जाकर अपने ऊपर ध्यान देकर, अपना ध्यान देकर, क्योंकि अगर आप ही ठीक नहीं रहेंगे तो आप परिवार को कैसे ठीक रखेंगे या आप अपने कार्यक्षेत्र में कैसे आगे बढ़ेंगे। तो आपकी जो सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए वो खुद ही होनी चाहिए और बाकी सब लोग जो हैं वो बाद में आने चाहिए। पर आपका जो परिवार है वो आपका ही परिवार है, पर अगर आप ही ठीक नहीं रहेंगे तो आपका जो परिवार है वो कैसे ठीक रहेगा। तो शांति और सहजता बनाए रखने के लिए आपके अंदर की शांति बहुत जरूरी है।
1: जी, सरिता जी, आप मतलब साहित्यकार भी हैं,
0: जी
1: तो इतिहास या वर्तमान में आप किसी ऐसी महिला का उदाहरण देना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को, जिन्होंने इन गुणों के माध्यम से समाज को और देश को प्रभावित किया है?
0: इतिहास की अगर हम बात करें तो मैं सबसे बड़ा उदाहरण झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का ही देना चाहूंगी, जो मेरी प्रेरणा स्रोत हैं। और मैं यहाँ बहुत गर्व के साथ कहूंगी कि मैंने दो बार जो है उनकी जो कार्यस्थल है वहाँ झांसी का किला, उसके दर्शन किए हैं। और सचमुच मैं उस मिट्टी को जब मैंने छुआ और अपने माथे पर लगाया तो बिल्कुल मुझे उस गर्व का एहसास हुआ और एकदम लगा कि एक नई शक्ति का मुझ में भी संचार हो रहा है। देखिए, आज के समय परिप्रेक्ष्य की बात हम करें तो महिलाओं को आजादी भी मिली है, शिक्षा के माध्यम से वो आगे बढ़ रही हैं, लेकिन जो वर्जनाएं उस समय थी,
2: प्राचीन काल में उन

0: वर्जनाओं को सहन करते हुए महारानी लक्ष्मीबाई, और दूसरे मेरी आदर्श हैं अहिल्याबाई होलकर जी, महारानी अहिल्याबाई होलकर जी। उन्होंने बचपन से लेकर के, बाल विवाह होते थे उस समय, तो वहां से लेकर के भी उन्होंने पूरे मानव जाति के कल्याण हेतु जो नारी शक्ति का परिचय दिया, दृढ़ता का परिचय दिया, उस समय उनके पास कोई साधन नहीं थे, और मैं तो यहाँ तक कहूंगी कि उन्हें हर तरह की वर्जनाएं जो है झेलनी पड़ती थी, फिर भी उन्होंने समाज के लिए, पूरे देश के लिए जो किया वो हम सबके लिए अनुकरणीय है। और मैं इन दो महिलाओं का ही अगर उदाहरण दूं, तो ऐसे तो देखिए भारतीय इतिहास में हमारे समक्ष बहुत सी ऐसी महिलाएं हुई हैं, लेकिन उस समय की अगर हम बात करें प्राचीन काल की, तो ये दो महिलाएं मेरे लिए बहुत ही आदर्श हैं। और विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने जो काम किया, परिवार का, समाज का विरोध झेल करके भी अपने देश की रक्षा की, उसके लिए तलवार उठाई, वहां वो दुर्गा बने, किस लिए बने कि अपने देश की रक्षा के लिए। तो मैं इन दोनों को नमन करती हूँ। मैं
1: जी
0: चाहूंगी कि आज के जमाने में भी, जब भी हमारे नए जो अंतरिक्ष कार्यक्रम आज लॉन्च हो रहे हैं, उनमें भी महिला शक्ति का बहुत बड़ा
1: जी
0: योगदान
1: बहुत
0: है। जी
1: बहुत सही भी है, और ये सत्य है। आज महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, पुरुष के साथ नहीं, पुरुष के आगे भी चल रही हैं। इसमें
0: जी
1: मैं पुरुषों की कोई वो नहीं कर रही हूं,
0: जी
1: लेकिन वक्त ये आ चुका है कि अब सबको साथ मिलकर एक सशक्त भारत का निर्माण करना
0: निर्माण
1: होगा।
0: करना है,
1: जी,
0: बिल्कुल।
1: नारी जो है श्रेया जी, अपनी आंतरिक शक्ति को बनाए रखने के लिए क्या क्या उपाय कर सकती है?
2: मेरा ये मानना है कि आंतरिक शक्ति को बनाए रखने के लिए, जैसे कि आपने कहा, नारी में शांति और सहजता, ये दोनों गुण भरपूर मात्रा में नारी की
0: जी
2: शक्ति के साथ जोड़ते हैं हम ये दो गुण। तो अपनी आंतरिक शांति को बनाए रखने के लिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, हमें अपने आप पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल के जमाने में अवसाद बहुत बढ़ गया है, बहुत स्ट्रेस होता है लोगों को। तो सबसे पहले अगर आपकी प्राथमिकता आप ही नहीं होगे, तो फिर आप किसी और का ध्यान नहीं रख सकते। तो अपनी आंतरिक शांति बनाए रखना बहुत जरूरी है, जो कि आपको हर क्षेत्र में आगे बढ़ाएगा, आपके निजी जीवन में भी वो आपको आगे बढ़ाएगा।
1: जी बड़ी अच्छी बात बताई आपने। यानी आंतरिक शक्ति को बनाए रखने के लिए खुद का देख रेख करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जी सरिता जी, जब हम सिर्फ शांति और सहजता की बात करते हैं, तो
0: जी
1: मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या इन गुणों को केवल नारी तक सीमित करना ही जरूरी है, या फिर जब बात हो रही है भारत, सशक्त भारत के निर्माण की, तो ये गुण जो है वो पुरुषों में भी कितनी आवश्यक हो जाती है?
0: हम कह सकते हैं कि गृहस्थ जीवन हो चाहे कोई भी जीवन हो, नारी और पुरुष दोनों ही जो है शक्ति के दो पहिए हैं, और दोनों के सामंजस्य के बिना घर गृहस्थी रूपी गाड़ी हो चाहे कोई भी गाड़ी हो, वो नहीं चल सकती। तो सिर्फ नारी में ही ये गुण हो, ये जरूरी नहीं है। जितने गुणों की आवश्यकता नारी में है, उतने ही गुणों की आवश्यकता पुरुष में भी है। हर पुरुष में कि 10 या 20% नारी के गुण, और हर नारी में पुरुषों के गुण विद्यमान रहते हैं, ये प्राकृतिक तौर पर ये जो है
1: जी
0: मान्यता प्राप्त
1: जी
0: है। तो पुरुषों का अगर सामंजस्य और सहयोग आपको परिवार में नहीं मिलेगा, तो अकेली नारी, हम कहते हैं ना कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, अकेली नारी कुछ नहीं कर सकती, फिर जो है ये शांति और सहजता सिर्फ किताबों वाली रहेगी।
1: बिल्कुल सही
0: अगर आप,
1: कहा।
0: जब तक आपके परिवार में सामंजस्य नहीं है, सह अस्तित्व की भावना नहीं है कि आप वर्किंग है, आप कामकाजी महिला हैं, तो जरूरी नहीं कि आप आती हैं तो आपकी जो है, समझ लीजिए आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो बेटे के लिए तो ये कहेंगे कि नहीं मेरा बेटा देखो काम करके थक के आया है, तो बहू वहां ऑफिस में बैठने के लिए तो नहीं गई है, वो भी काम करके थक के आई है। तो दोनों के लिए मापदंड समान होने चाहिए, और वहां सामंजस्य और सह अस्तित्व की भावना जरूर होनी चाहिए, और पुरुषों में भी ये गुण अवश्य होने चाहिए, तभी एक परिवार की जो है गाड़ी बिल्कुल जो है सही तरीके से चल सकती है, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाता है। सिर्फ अकेले एक तरफा हम कह सकते हैं रिश्ते जो है नहीं निभाए जा सकते।
1: जी श्रेया जी, आप कुछ जोड़ना चाहेंगी?
2: मैं ये कहना चाहूंगी कि हमेशा से नारी को ही सहनशील और शांत बताया गया है, क्योंकि अगर हम देखें तो साहित्य जो है हमारे समाज का दर्पण है, तो बहुत बड़े बड़े साहित्यकारों ने भी नारी को इसी रूप में दर्शाया है। अगर हम देखें तो मैथिली शरण गुप्त जी की एक पंक्ति है, आंचल में दूध आंखों में पानी, और जयशंकर प्रसाद जी ने कहा है कि नारी तुम श्रद्धा हो। तो नारी को ही हमेशा ममता और शांत सरल बताया गया है, पर यह गुण तो मानवीय गुण है, यह गुण एक सभ्य मनुष्य की होने की पहचान है, और अगर हम देखें तो इनका संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है, एक व्यापक दृष्टिकोण का होना बहुत जरूरी है।

0: जी, समय जो है वो इशारा कर रहा है कि हम अपने कार्यक्रम समाप्ति की तरफ बढ़े। चलने से पहले हम आप दोनों से ही आपके विचार जानना चाहेंगे कि शांति और शक्ति को और सहजता को, इन तीनों का सामंजस्य मिला के नारी कैसे अपने आप के साथ साथ देश को भी आगे बढ़ा सकती है और समाज को भी। सरिता जी,
1: जी बिल्कुल, आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि शिक्षा जो है उसके माध्यम से, शिक्षा और संस्कार जब दोनों चीजें मिल जाती है तो उसके माध्यम से एक नारी शक्ति पूर्ण रूप से जो है अपने आप को आगे ले जा सकती है। देश के भविष्य में हम कह सकते हैं कि जब हम जीडीपी की बात करते हैं तो आज के उसमें हम देखें तो जितना पुरुषों का योगदान है, अगर उतना नहीं है तो कम से कम आधा तो नारी शक्ति का योगदान है ही। संगठित क्षेत्र की हम बात करते हैं जो हमारे आंकड़ों में आता है, फाइलों में आता है, हम सिर्फ उसी की बात करते हैं, जबकि नारी असंगठित क्षेत्र में जो मजदूर वर्ग की हमारी
0: बिल्कुल सही
1: नारियां
0: कहा
1: हैं
0: जी,
1: वो भी, उनका भी उतना ही योगदान है
0: बिल्कुल सही
1: परिवार में, समाज के निर्माण में,
0: जी,
1: परिवार के निर्माण में और देश के अर्थव्यवस्था में। तो इन सबको मिलाकर के भले ही वो अनपढ़ हों लेकिन उनके बिना आज जो है हम आगे नहीं बढ़ सकते। आज उनकी सहायता के बिना जो कामकाजी, हम कामकाजी नारियां हैं जो ऑफिस में बैठकर काम करती हैं, भले ही हम वहां अपने आप को बहुत सक्षम और वो समझते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगी कि सबको मिला करके ही, चाहे वो असंगठित क्षेत्र की हो या ना
0: जी
1: हो, अशिक्षित हो, सबको मिला करके अगर नारी शक्ति की हम बात करें, सहजता, शांति और शक्ति की बात करें, इन गुणों को, इन आयामों को लेकर के चलें, तभी देश आगे बढ़ेगा। और मैं बहुत गर्व के साथ कह सकती हूँ आज हमारा भारत इस दिशा में बहुत आगे बढ़ रहा है, और वह दिन दूर नहीं जब के महिला शक्ति और पुरुषों की दोनों की जो है शक्ति को मिला करके हम विश्व शक्ति बनेंगे।
0: जी बहुत
1: ये
0: अच्छी बात श्रेया
1: मेरे
0: जी।
1: जो है
0: ताओ दर्शन में एक सिद्धांत है कि पानी जो है वो जितना कोमल और शांत रहता है वह उतना ही बड़े से बड़े पत्थर को काटने की भी क्षमता रखता है। नारी को समाज ने हमेशा से ही एक कोमलता के सांचे में ढाला है, उसे बाहर नहीं आने दिया। पर अब दुनिया काफी आगे बढ़ चुकी है, नारी अपने घर का जो दायरा है नारी ने वो बढ़ा दिया है, अपने घर से अब वो कार्य क्षेत्र में भी आ गई है क्योंकि उसमें क्षमता है। अगर वह जन्म दे सकती है एक नए जीव को तो वह आगे भी बढ़ सकती है, उसने यह साबित कर दिया है। तो इसमें शिक्षा का बहुत हाथ है जैसा कि सरिता मैम ने बोला, और शिक्षण होने से ही नारी को निर्णायक होने के भी जो फैसले लेने का अधिकार है वो मिला है। तो नारी ने बहुत प्रगति करी है, पर इस प्रगति को अगर वह अपने जो मूल गुण है वो भूल के अगर आगे बढ़े तो वह शायद आगे नहीं बढ़ पाएगी क्योंकि संतुलन होना भी बहुत जरूरी है। तो इन गुणों के साथ साथ अपनी शिक्षा का उपयोग करके ही नारी को आगे बढ़ना चाहिए। जी, बड़ी अच्छी बात बताई आपने जी। हाँ श्रोताओं, सहजता और शांति, नारी शक्ति के दो आयाम के माध्यम से हमने आज यह समझा कि नारी की वास्तविक शक्ति केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं है, बल्कि उसके भीतर बसे इन कोमल किंतु अत्यंत प्रभावशाली गुणों में भी निहित है। सरिता सुराना जी और श्रेया धोपाल जी, आप दोनों ने ही अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर आकाशवाणी हैदराबाद को दिया और अपने विचारों से, अपने अनुभवों से यह स्पष्ट किया कि सहजता नारी के व्यक्तित्व को स्वाभाविकता और आत्मविश्वास भी प्रदान करती है, और इस भाग जीवन की शैली में जिसकी गति बहुत तेज होती जा रही है, इन गुणों का महत्व और भी बढ़ जाता है। हमारे श्रोताओं ने इससे काफी हद तक सीख ली होगी और अपने जीवन में भी उतारने की कोशिश करेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे सहजता और शांति, नारी शक्ति और सम्मान के दो आयाम पर एक चर्चा। चर्चा में सहभागी थीं श्रिया धोपाल और सरिता सुराना। चर्चा का संचालन कर रही थीं सीमा कुमारी। आज की इस प्रस्तुति के माध्यम से हमने जाना कि नारी केवल शक्ति का स्वरूप ही नहीं बल्कि शांति और सहजता की भी सजीव अभिव्यक्ति है, जो जीवन को संतुलन, सामंजस्य और सौंदर्य प्रदान करती है। नारी की सहनशीलता, उसकी करुणा और आत्मिक दृढ़ता समाज को न केवल सुदृढ़ बनाती है बल्कि उसे संवेदनशील, समरस भी बनाती है। अब पेश है मधुर गीत मेरी माँ। इस गीत को गाया है शंकर महादेवन ने और इसका संगीत दिया है शंकर एहसान लॉय ने। यह गीत लिया गया है फिल्म तारे जमी पर से। आइए सुनते हैं यह गाना।

0: శ్రీమతి గంగూబాయ్ హంగాల్ గారి గాత్ర కచేరీ విన్నారు. ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం, సమయం 12 గంటలు కావస్తోంది. హిందీలో వార్తలు వింటారు ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి రిలే.
1: నమస్కార్, ఆకాశవాణి సమాచార్ కే సాథ్ మే ప్రియాంక అరోడా. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिजिस्तान की अपनी 2 दिन की यात्रा के पहले दिन राजधानी बिश्केक में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद किया. इस अवसर पर योग, मानस अकादमी सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत के साथ मिलकर कार्य करने वाले 4 प्रतिनिधिमंडल मौजूद थे. इसके बाद प्रधानमंत्री ने बिश्केक स्थित महात्मा गांधी मेमोरियल पार्क में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. प्रधानमंत्री आज शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे. इनमें रूस, ईरान, किर्गिजिस्तान और आर्मेनिया के राष्ट्राध्यक्षों के साथ होने वाली द्विपक्षीय बैठकें शामिल हैं. प्रधानमंत्री मोदी कल शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे. इससे पहले उज्बेकिस्तान की 2 दिन की राजकीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कल ताशकंद में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ बातचीत की. दोनों नेता भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमत हुए. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी 3M से भारत में अनुसंधान और विकास, उन्नत विनिर्माण और स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला में निवेश बढ़ाने का आह्वान किया है. वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वित्त मंत्री ने अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में आयोजित G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक से इतर 3M के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलियम ब्राउन के साथ वार्ता की. चर्चा का मुख्य विषय भारत में 3M की भागीदारी को और मजबूत बनाना था. नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद त्रिशूली 3A सहित कई पनबिजली परियोजनाओं की सुरंगों में फंसे सैकड़ों लोगों को निकालने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं. एक रिपोर्ट.
2: भारत और चीन के विशेषज्ञों सहित बचाव दल सुरंग के अंदर फंसे लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं. बुधवार की इस आपदा में नेपाल में मृतकों की संख्या 794 हो गई है. तिब्बत में आधिकारिक तौर पर मृतकों की संख्या 16 है, जबकि 546 लोग लापता हैं. त्रिशूली नदी में फिर से बाढ़ के कारण मध्य नेपाल में एक झूलता हुआ पुल बह गया. पुल के बह जाने से गंडकी ग्रामीण नगर पालिका 7 और 8 के निवासियों का पृथ्वी राजमार्ग से संपर्क टूट गया है. समाचार कक्ष से कृष्णकांत.
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT के संयुक्त दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगी. इस अवसर पर देशभर के 18 NIFT परिसरों से पास होने वाले विद्यार्थियों को डिग्रियां दी जाएंगी. भारतीय नौसेना ने आज मुंबई के नौसेना गोदी में निस्तार श्रेणी के 2 डाइविंग सपोर्ट पोत INS निपुण को बेड़े में शामिल किया. समारोह में नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने कहा कि INS निपुण नौसेना के पानी के नीचे चलाए जाने वाले विशेष अभियानों में महत्वपूर्ण साबित होगा. विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया INS निपुण गहरे समुद्र में चलाए जाने वाले गोताखोर और जटिल अभियानों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है. मध्य प्रदेश में कक्षा 12वीं में 75% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप खरीदने के लिए 25,000 रूपये की सहायता राशि दी जाएगी. मुख्यमंत्री मोहन यादव कल भोपाल में विद्यार्थियों के बैंक खातों में ये धनराशि अंतरित करेंगे. उज्जैन में आज भगवान महाकाल की 5वीं शोभा यात्रा निकाली जाएगी. ये श्रावण भाद्रपद के महीने में होने वाली शोभा यात्राओं का हिस्सा है. इस बार शोभा यात्रा का मुख्य आकर्षण 84 महादेव हैं. शोभा यात्रा शाम 4 बजे मंदिर से निकलेगी और रात लगभग 8 बजे महाकालेश्वर मंदिर में संपन्न होगी. शेयर बाजार आज दोपहर के सत्र में 0.5% की मामूली गिरावट के साथ काम कर रहे थे. निफ्टी 150 अंक गिरकर 24,026 पर पहुंच गया. वहीं सेंसेक्स 390 अंक गिरकर 76,875 पर पहुंच गया. अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में एक बड़े उलटफेर में सर्बिया के नोवाक जोकोविच पहली दौर में हारकर बाहर हो गए हैं। उन्हें अर्जेंटीना के मारियानो नावोन से हार

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में।
0: और अजीत का भी नमस्कार। श्रोताओं, हमारा विशेष धन्यवाद स्वीकार कीजिए, क्योंकि पिछले सप्ताह के प्रसारण में हमने मोबाइल, एआई और परिवार जैसे विषयों पर बात की थी,
2: और आप सबसे निवेदन किया था कि इन विषयों पर कुछ पंक्तियाँ और स्लोगन लिख भेजें। तो सुनते हैं एक स्लोगन
0: जो हमें लिखा है ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, राजू, लल्ला, पूजा, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू ने। लिखते हैं
2: 5 अगस्त, विषय मोबाइल पर स्लोगन। जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं। मोबाइल हमसे है, हम मोबाइल से नहीं। ये हमारा सेवक है, स्वामी नहीं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस शानदार स्लोगन के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले सप्ताह संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: गांव गणेश धाम परसुली, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलोदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिमबाई मानिकपुरी।
0: मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला, आरती कुमारी और ओम कुमार जी लिखते हैं, ये भी जानिए मैं भारतीय स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया जी पर आधारित जानकारी सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा।
2: उनके जीवन, संघर्ष और अदम्य देशभक्ति के बारे में जानना बेहद प्रेरणादायक रहा। देश के प्रति उनका समर्पण और राष्ट्र प्रेम वास्तव में सराहनीय है। कार्यक्रम की पूरी टीम को इस सुंदर प्रस्तुति के लिए हार्दिक धन्यवाद। राजाजी नगर बेंगलोर से अखिला प्रसाद और एनआर प्रसाद ने मोबाइल विषय पर स्लोगन भेजते हुए लिखा है,
0: डिजिटल तकनीक का उपयोग ज्ञानवर्धन और कार्य को गति देने के लिए करें, नकारात्मक कार्यों के लिए कभी नहीं। मोबाइल को बच्चों का खिलौना न बनाएं।
2: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
0: अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, राधिका, प्रभा देवी तामुरिया और मास्टर अल कबीर।
2: ग्राम मंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे, अंजनी अंगारे ने शब्द का अर्थ बताते हुए लिखा है, वैमानिकी का अर्थ है विमान उड़ाने से संबंधित विज्ञान।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबकी प्रतिभागिता के लिए। हम हरदम प्रयास करते हैं कि उमंग कार्यक्रम के द्वारा आपको रोचक से रोचक जानकारी दें
2: जी,
0: और मनोरंजक शैक्षिक कार्यक्रम भी सुनाएं। तो अब सुनते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो हमारा पहला प्रश्न था, थर्मामीटर या ज्वर मापी यंत्र का आविष्कार किसने किया था?
2: थर्मामीटर का आविष्कार गैलीलियो गैलीली ने किया था। इसे आधुनिक रूप दिया था 1714 में डेनियल फेरनहाइट ने।
0: हमारा अगला प्रश्न था, आंग किसे कहते हैं और ये किस जनजाति में प्रचलित है?
2: आंग का अर्थ होता है राजा, मुखिया या वंशानुगत प्रमुख। ये नागालैंड की कोयांक जनजाति की सर्वोच्च उपाधि है।
0: और सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, डार्क स्काई रिजर्व किसे कहते हैं?
2: डार्क स्काई रिजर्व उस विशेष जगह को कहते हैं जहां कृत्रिम प्रकाश का इस्तेमाल नहीं के बराबर होता है, ताकि वहां के आकाश को वास्तविकता में देखा जा सके।
0: हमारा अगला प्रश्न था, मौसिनराम और मेघालय की खासी जनजातियों का मुख्य भोजन क्या है?
2: मौसिनराम और मेघालय की खासी जनजातियों का मुख्य भोजन चावल और जादोह है।
0: और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमने आपसे पूछा था, राजस्थान के किस गांव और उसके आसपास के क्षेत्रों में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है?
2: राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तानी इलाके के फलौदी और उसके आसपास के गांवों में गर्मियों के दिनों में तापमान बेहद ऊंचा पहुंच जाता है, लगभग 50 से 52 डिग्री सेल्सियस।
0: श्रोताओं, एक बहुत ही खास निवेदन है आप सबसे, ध्यान से सुनिएगा कि मात्र सुविचार ना भेजें। इन दिनों सुविचारों की बाढ़ आ रही है
2: जी।
0: सुविचार भेजना आसान है, लेकिन प्रश्नों के उत्तर देना और कार्यक्रमों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना जरा कठिन।
2: सुविचार जरूर भेजें, लेकिन कार्यक्रमों पर प्रतिक्रिया भी अवश्य दें। और यदि हमारे कार्यक्रमों को सुनना चाहते हैं या पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं, तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर जाइए, वहां आपको कक्षा 9 तक की सारी पुस्तकें ध्वनि रूप में उपलब्ध हो जाएंगी।
0: तो श्रोताओं, अब प्रस्तुत है आज का प्रश्न। प्रश्न है, सम्राट अशोक किस वंश के सम्राट थे? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: सम्राट अशोक किस वंश के सम्राट थे?
0: आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। तो अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, शीर्षक है सीइंग विदाउट सीइंग।
2: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम समावेशी शिक्षा को प्रोत्साहित करते हुए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति सामान्य बच्चों के मन में जागरूकता को बढ़ाता है।

0: वाहन चलाने से पहले हमेशा ये सुनिश्चित करें कि हेडलाइट ठीक से काम कर रही हो। सही रोशनी से रास्ता भी साफ दिखाई देता है और आसपास चल रहे वाहन भी दिखाई देते हैं।
1: और इस कार्यक्रम के बाद आप सुनते हैं कार्यक्रम वो आखिरी पत्ता।
2: ये कार्यक्रम प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक व उपन्यासकार ओ हेनरी द्वारा रचित कहानी का रेडियो नाट्य रूपांतरण है, जिसमें बताया गया है कि यदि मन में कोई डर या कुंठा बैठ जाए तो उसके परिणाम बहुत नकारात्मक हो सकते हैं। कार्यक्रम में बड़ी मार्मिकता से मानवीय संवेदनाओं को भी स्पर्श किया गया है।
3: साथियों नमस्कार।
4: नमस्कार साथियों,
3: आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं कक्षा 9 की अंग्रेजी की पूरक पाठ्य पुस्तक मोमेंट्स के एक पाठ की कथा नाट्य प्रस्तुति। शीर्षक है द लास्ट लीफ, यानी आखिरी पत्ता।
4: ये कहानी प्रसिद्ध अमेरिकी कहानीकार ओ हेनरी द्वारा 1905 में लिखी गई थी। ओ हेनरी का पूरा नाम था ओलिवर हेनरी। तो आइए सुनते हैं ये कथा नाट्य प्रस्तुति।
3: अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन। इसी शहर का एक बहुत सुंदर कस्बा है जो ग्रीनविच विलेज के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक रूप से ये बहुत ही रमणीक और सुरम्य गांव है, इसीलिए इस गांव में अक्सर बहुत से चित्रकार आया करते थे
4: ताकि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को वो अपने कैनवस पर उतार सकें और दुनिया के सामने ग्रीनविच गांव की खूबसूरती का नजारा पेश कर सकें। इसी ग्रीनविच गांव में एक दिन दो लड़कियां रहने के लिए आईं। वो दोनों चित्रकार थीं और वो भी वहां के सौंदर्य को अपने कैनवस पर उतारना चाहती थीं। एक थी कैलिफोर्निया से और एक थी मेन से।
3: इन लड़कियों में से एक का नाम था जॉन्सी और दूसरी का नाम था सू। दोनों साथ साथ रहने लगी और उन्होंने चित्रकारी शुरू कर दी।
5: अरे जॉन्सी, तुम इतनी सुबह सुबह अपना पेंट ब्रश और कैनवस लेकर कहाँ चल दी?
6: तो सू, ग्रीनविच के सुहाने सूर्योदय को अपने कैनवस पर उतारना जो है।
5: अरे हाँ, तो चलते हैं और यहाँ की सुंदरता को घर लेकर आते हैं, वो भी अपने अपने कैनवस पर।
6: यस।
4: साथियों, वो मिली तो थी वसंत के महीने में, लेकिन धीरे धीरे शरद ऋतु शुरू हो गई और अब भयंकर सर्दी का मौसम था। उस भयंकर शरद ऋतु में अचानक एक अजनबी ने ग्रीनविच गांव में प्रवेश किया और उसने अपने ठंडे हाथों से लोगों को छूना शुरू किया। उस अजनबी को डॉक्टरों ने नाम दिया था मिस्टर निमोनिया। उसके ठंडे स्पर्श में राहत नहीं थी बल्कि मौत थी। अब ये महामारी बन गई थी दोस्तों। बहुत से लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे, जिनमें एक जॉन्सी भी थी। वो गंभीर रूप से बीमार थी और दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी।
3: उसके मित्र सू उसकी बहुत सेवा करती थी। एक दिन जब डॉक्टर उसे देखने आया तो उसने नोट किया कि जॉन्सी उससे ठीक से बात भी नहीं कर रही है, बस हां हूं कर रही है। डॉक्टर ने एक खास बात नोटिस की कि जॉन्सी बस खिड़की की ओर लगातार देखती जा रही थी।
4: साथियों, डॉक्टर ने उधर भी देखा लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने सू से कहा,
7: सू
5: जी,
7: जॉन्सी तुम्हारी दोस्त है।
5: जी हाँ।
7: भाई मुझसे तो वो ठीक से बात नहीं कर रही, जरा उससे पूछकर मालूम करो कि उसे ऐसी क्या तकलीफ है।
5: जी डॉक्टर साहब।
7: और वो क्यों हमेशा खिड़की की तरफ देखती रहती है?
5: मैं पूछती हूँ।
3: दूसरे दिन सू ने गौर से देखा तो उसे समझ में आया कि जॉन्सी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से खिड़की के बाहर किसी चीज को घूरते हुए कुछ बुदबुदा रही है।

0: धीरे से उसके पास गई और सुनने की कोशिश करने लगी।
1: 15, 40
0: क्या?
2: थोड़ी देर के लिए वो चुप रही, फिर उसने गिना।
1: 13, 12, 11 ओह
0: जॉन्सी,
1: अब सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है। सू
0: सू ने जॉन्सी को झकझोरा और पूछा,
1: क्या गिन रही हो? 11, 10, 9 ओह उस दिन वो करीब 100 थे, लेकिन सू अब वो बहुत कम हो गए हैं।
0: क्या कम हो गए हैं?
1: पहले मुझे गिनने में मुश्किल होती थी, लेकिन हाँ अब मैं इन्हें गिन सकती हूँ, आसानी से गिन सकती हूँ सू।
2: सू ने फिर से बाहर देखा। खिड़की के सामने बस एक आईवी क्रीपर का पेड़ था जो पतझड़ की मार से बहुत बुरी हालत में था, लगभग अधमरा सा, बस कुछ पीली पत्तियां दिखाई दे रही थी। सू ने उसे दोबारा झकझोरा और पूछा,
3: जॉन्सी उस दिन क्या 100 थे जो अब कम हो गए हैं? तुम क्या गिन रही हो?
1: 6, now it's 6, 5, 4 ओह
3: जॉन्सी तुम्हें क्या हो गया है? मुझे डर लगने लगा है, खिड़की में तो कुछ नहीं है, तुम क्या गिन रही हो? उधर नहीं मेरी तरफ देखो जॉन्सी।
1: Only 4
3: मेरी तरफ देखो
1: सू, only 4 ओह अब सिर्फ 3 बचे हैं।
3: क्या 3 बचे हैं? What's 3 dear?
1: 3 पत्तियां।
3: पत्तियां?
1: हाँ, खिड़की के पास जो आईवी क्रीपर का पेड़ है ना सू,
3: हाँ
1: मैं उसकी पत्तियां गिन रही हूँ। मुझे लगता है,
3: क्या लगता है?
1: यही कि बस अब 3 पत्तियां बची हैं, और जिस दिन आखिरी पत्ता गिर जाएगा ना, उस दिन
3: क्या जॉन्सी?
1: उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
3: ओह नो, ये क्या कह रही हो तुम जॉन्सी? ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है।
1: नहीं, ये तय है सू कि उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
3: हाँ
1: सू, अब सिर्फ 3 पत्तियां बची हैं, ज्यादा समय नहीं है मेरे पास सू।
3: ओह जॉन्सी,
2: साथियों, सू ने उसे बहुत समझाया। उसी दिन डॉक्टर भी आ गए। डॉक्टर ने भी बहुत समझाया, सारे तर्क दिए, लेकिन जॉन्सी मानने को तैयार नहीं थी।
0: अचानक उस दिन कुछ अजीब सा हुआ। एक बूढ़ा व्यक्ति जॉन्सी को देखने आया। सभी उस बूढ़े व्यक्ति को सनकी और लगभग पागल समझते थे।
2: उस व्यक्ति का नाम था मिस्टर बेयरमैन। वो बहुत दिनों से ग्रीनिच गांव में रह रहे थे।
0: वो चित्रकार थे। बहुत बार उन्होंने चित्रकारी में असफलता देखी थी और लोगों का मजाक भी सहा था। वो घर घर घूमकर हमेशा लोगों से कहा करते थे,
4: मैं अपनी चित्रकारी से एक मास्टरपीस बनाना चाहता हूँ जो अब तक नहीं बना पाया, लेकिन बनाऊंगा जरूर।
2: लोग उसे देखते ही उससे कतराने लगते थे। लोग उस पर हंसते और कहते, देखो मास्टरपीस वाला बुढ़ा आ रहा है। जब वो जॉन्सी को देखने के लिए आए तो सू ने उन्हें बताया कि वो किस वजह से पत्ते गिन रही है।
0: इतने में जॉन्सी ने अपनी दुर्बल आवाज में फिर से गिना,
1: अब सिर्फ 2 पत्तियां ही बची हैं।
2: मिस्टर बेयरमैन ने बड़ी खामोशी से सू को देखा और एक लंबी सांस लेने के बाद गंभीरता से कहा,

0: जोनसी, अभी मैं जा रहा हूँ, लेकिन देखना देखना तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं जल्दी ही तुम्हें देखने आऊंगा, मैं जल्दी ही तुम्हें देखने आऊंगा।
1: इतना कहकर तेज कदमों से मिस्टर बीयरमैन वहां से चले गए।
2: अब मात्र दो पत्तियां ही बची थीं। दूसरे दिन की शाम एक पत्ता और गिर गया। सुबह हुई तो जॉनसी ने देखा अब सिर्फ एक ही पत्ता बचा हुआ है। उसका दिल धक धक कर रहा था। वो सोचने लगी,
3: आखिरी पत्ता अब शायद गिरने ही वाला है। अब मेरी चंद सांसें बाकी हैं। आखिरी पत्ता गिरने ही वाला है, बस गिरने ही वाला है।
1: साथियों, जॉनसी खिड़की की ओर देखती रही और इस तरह पूरा दिन बीत गया, पर वो आखिरी पत्ता अभी भी वहीं था। हैरत की बात तो ये कि दूसरा दिन भी बीत गया पर पत्ता वहीं का वहीं था। जॉनसी खिड़की की ओर टकटकी लगाए बैठी रही और इस दौरान बर्फबारी के साथ पतझड़ के मौसम की बारिश शुरू हो गई। साए साए आंधी चलने लगी। रात भर रुक रुक कर बारिश होती या बर्फ गिरती।
2: जैसे ही सुबह हुई, जॉनसी ने सू से कहा,
3: सू, मेरी दोस्त।
4: हाँ जॉनसी।
3: जरा वो खिड़की खोल दे, मैं देखना चाहती हूँ कि वो आखिरी पत्ता वहाँ है या नहीं। खोल जरा खिड़की सू।
1: सू की तो मानो रूह ही कांप गई थी। कांपते हुए हाथों से डरते डरते सू ने खिड़की खोली। जॉनसी ने खिड़की की ओर देखा, लेकिन आश्चर्य, वो पत्ता अभी भी गिरा नहीं था। सुहानी सुबह थी, मंद मंद हवा चल रही थी, आकाश मानो पूरी तरह से धुला हुआ था, चमकता हुआ सूरज निकल आया था। वो आखिरी पत्ता हवा में कांपता हुआ अभी भी वहीं का वहीं था। फिर अचानक जॉनसी को कुछ हुआ और उसने सू को बुलाया और कहने लगी,
3: सू।
4: हाँ जॉनसी।
3: सू, ऐसा लगने लगा है कि मुझे नई जिंदगी मिलेगी। मैं नहीं मरूंगी।
4: हाँ बिल्कुल,
3: अब मैं नहीं मरूंगी सू।
4: बिल्कुल जॉनसी।
3: हाँ, इसलिए ये पत्ता नहीं गिरा।
4: पत्ता?
3: हाँ, मेरी सोच अच्छी नहीं थी जो मैंने अपनी मृत्यु के बारे में सोचा। देखो ना, वो पत्ता अभी भी वही है।
4: हाँ
3: हाँ,
4: मैंने देखा। मैंने देखा जॉनसी, मैंने देखा।
2: दो दिन और बीत गए, वो पत्ता वहीं का वहीं था। जॉनसी अब ठीक होने लगी थी। डॉक्टर ने आकर उसे चेक किया और कहा,
0: गुड, थैंक गॉड, अब इसकी तबीयत अच्छी हो गई है, ये लड़ाई जीत जाएगी।
2: जॉनसी मुस्कुराई और उसने खिड़की की ओर देखा। वो आखिरी पत्ता वहीं था, पर डॉक्टर के जाने के बाद सू ने कहा,
4: जॉनसी, कैसा महसूस कर रही हो?
3: बेहतर।
4: ये लो कॉफी पियो।

0: థ్యాంక్ యూ.
1: జాన్సీ, ఏక్ బురీ ఖబర్ భీ హై.
0: క్యా హువా?
1: వో మిస్టర్ బెర్మన్, ఉన్కీ కల్ అస్పతాల్ మే మౌత్ హో గయి.
0: కౌన్ బెర్మన్? వహీ బూఢ़े కళాకార్?
1: హాన్.
0: ఓహ్, జో ముజే ఉస్ దిన్ దేఖ్నే ఆయే థే?
1: హాన్, వహీ.
0: ఓహ్, జో కహతే థే మే మాస్టర్ పీస్ బనాఊంగా, వహీ నా?
1: హాన్, వహీ మిస్టర్ బెర్మన్.
0: ఓ గాడ్,
1: ఉన్కీ హాలత్ దరసల్ ఉస్ దిన్ బహుత్ ఖరాబ్ హో గయి థీ జబ్ తుమ్నే వో ఆఖరి పత్తా దేఖా థా. జాన్సీ, అబ్ మే తుమ్హే ఏక్ రాజ్ కీ బాత్ బతానా చాహతీ హూం.
0: క్యా?
1: క్యా కభీ తుమ్హే యే ఖయాల్ నహీ ఆయా కి సారే పత్తే ఇస్ పత్ఝడ్ మే గిర్ గయే పర్ వో ఆఖరి పత్తా
0: క్యూ నీ గిరా?
1: హాన్,
0: క్యూ నీ గిరా? आखिर क्या हो सकता है? सू
2: जॉन्सी सोच में पड़ गई. फिर सू ने कहा,
1: जॉन्सी, जिस दिन वो आखिरी पत्ता बचा था ना, उसके दूसरे दिन किसी ने मिस्टर बेरमन को हमारी ही खिड़की के पास बहुत बुरी हालत में पाया. उनके जूतों में बर्फ भरी हुई थी और उनके पेंट ब्रश और कैनवस इसी आईवी क्रीपर पेड़ के पास पड़े पाए गए थे.
0: ओह,
1: जहां वो रात भर पेंटिंग करते रहे.
0: पेंटिंग?
1: हाँ.
0: कैसी पेंटिंग?
1: जो पत्ता तुम देख रही हो वो कुछ और नहीं लेकिन मिस्टर बेरमन की पेंटिंग है, जो उन्होंने आखिरी पत्ते के गिरने के बाद उस कड़कड़ाती सर्दी वाली रात में उस पेड़ पर चिपका दी थी.
0: ओह, तो वो पेंटिंग है?
1: हाँ.
0: असली पत्ता नहीं है?
1: नहीं.
0: लेकिन सू, कितना असली लग रहा है.
1: हाँ जॉन्सी, बिल्कुल असली है ना मास्टरपीस?
0: हाँ सू, मास्टरपीस. वो कहा करते थे कि मैं कभी ना कभी मास्टरपीस बनाऊंगा और सो उन्होंने बना दिया.
1: हाँ जॉन्सी,
0: आखिर बना दिया उन्होंने मास्टरपीस. सो
1: हाँ, उन्होंने बना दिया.
0: उन्होंने बचा दिया मुझे. उन्होंने मेरी जान बचा ली. सो बचा लिया उन्होंने मुझे. उन्होंने मरने से बचा लिया मुझे. सो
1: हाँ,
0: मास्टरपीस.
1: हाँ,
0: मास्टरपीस. वो आखिरी पत्ता, वो आखिरी पत्ता.
3: डबडबाई आंखों से जॉन्सी ने एक बार फिर से खिड़की के बाहर देखा. वो आखिरी पत्ता वही था जो अब मास्टरपीस बन गया था.
2: ग्रीनिच गांव के कलाकार एक एक करके आ रहे थे और उस आखिरी पत्ते को विस्मय और श्रद्धा से निहार रहे थे. जॉन्सी और सू की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे. मानो वे अश्रु अविरल बहकर उस बूढ़े कलाकार को श्रद्धांजलि दे.
4: एनसीईआरटी वारी प्रायोजित कार्यक्रम विन्नारु. ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం. సమయం 1:10. తెలుగులో ప్రాంతీయ వార్తలు వింటారు.

0: समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान में आज शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इनमें रूस, ईरान और किर्गिस्तान के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बैठकें शामिल है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा के पहले दिन आज राजधानी बिश्केक में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद किया।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिश्केक में भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ आत्मीय संवाद किया। प्रधानमंत्री ने भारत और किर्गिज गणराज्य के बीच मैत्री संबंधों को मजबूत करने में भारतीय समुदाय की ऊर्जा, उत्साह और महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। अपनी किर्गिस्तान यात्रा के दौरान श्री मोदी ने आज बिश्केक स्थित महात्मा गांधी स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। यह श्रद्धांजलि महात्मा गांधी के विचारों की प्रासंगिकता और उनकी सार्वभौमिक स्वीकारिता को दर्शाती है। प्रधानमंत्री कल शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: इससे पहले उज्बेकिस्तान की दो दिन की राजकीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कल ताशकंद में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेफ के साथ बातचीत की। दोनों नेता भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उज्बेकिस्तान में भारत की संस्कृति, इतिहास, भाषाओं और विचारों के प्रति लोगों का लगातार बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने तमिल भाषा और संस्कृति में बढ़ती रुचि के साथ तिरुक्कुरल के महत्व का भी जिक्र किया।
2: सैकड़ों साल पहले तमिल भाषा में एक तिरुक्कुरल जो लिखा गया है, आज भी जीवन के सब क्षेत्रों में वो बहुत ही प्रेरणा देने वाला और अध्यात्म भी है, फिलोसॉफी है, व्यवहारु ज्ञान भी है। जब आप 80 साल मना रहे हैं तो क्या ये कल्पना कर सकते हैं कि उज्बेक में तिरुकुरल का यहाँ के लैंग्वेज में अनुवाद हो? सचमुच में वो यहाँ आपके ज्ञान के अंदर संवर्धन करेगा।
0: सरकार ने देश में चिप विनिर्माण तंत्र को बढ़ावा देने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए के व्यय के साथ सेमिकॉन कार्यक्रम के दूसरे चरण को अधिसूचित किया है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आगामी वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार में भारत की हिस्सेदारी करीब 10% हो सकती है। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में बड़ी भूमिका निभाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। श्री वैष्णव ने सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम के दूसरे चरण के सभी 6 स्तंभों की अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि सरकार का जोर भारत को वेफर निर्माण से लेकर चिप उत्पादन तक वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने पर है।
3: वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग को भरोसा है कि आने वाले दशकों में भारत बड़े निवेश के लिए एक प्रमुख केंद्र बनेगा। इसका प्रमाण हमें सेमिकॉन 1 के तहत मंजूर की गई परियोजनाओं से मिलता है। इनमें कई इकाइयों ने भूमि पूजन के केवल 13 महीने के भीतर व्यावसायिक उत्पादन शुरू किया है। इसी तेज गति ने वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग का भारत पर भरोसा और मजबूत किया है।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: अपडेट रहे, आगे रहे, expert@AIRnews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि वस्त्र और परिधान क्षेत्र न केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि ये लाखों लोगों को रोजगार और आजीविका भी प्रदान करता है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि फैशन और वस्त्र प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की वैश्विक उपस्थिति बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं।
5: फैशन टेक्नोलॉजी भी ऐसा क्षेत्र है जिसमें विश्व स्तर पर भारत की भूमिका बढ़ाने को अपार संभावना है। आपको इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। इस प्रयास में आप प्रण रखें कि आपकी सोच वैश्विक हो, लेकिन आपकी जड़ें अपने मिट्टी की विशिष्टता और जीवन मूल्यों से जुड़े। इस तरह आप न केवल सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनेंगे, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के

0: संरक्षण और संवर्धन में भी अपना योगदान दे सकेंगे।
1: वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प में युवाओं से योगदान देने का आह्वान करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को रोजगार देने वाला बनने का प्रयास करना चाहिए।
0: आप ऐसे समय में फैशन टेक्नोलॉजी के विभिन्न विधाओं के स्नातक बन रहे हैं जो भारत आत्मनिर्भरता के अनेक आयामों पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे देश पहले की तुलना में कहीं अधिक आत्मविश्वास के साथ विश्व पटल पर अपनी भूमिका को विस्तार दे रहे हैं। मुझे बताया गया है कि 20 साल पहले महिलाओं की संख्या केवल 20% था। अभी 4000 करीब जो बच्चे यहाँ उपस्थित थे उनमें से 85% महिलाएं हैं।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी 3M से भारत में अनुसंधान और विकास, उन्नत विनिर्माण और स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला में निवेश बढ़ाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि भारत तेजी से प्रौद्योगिकी, नवाचार और वैश्विक विनिर्माण के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर रहा है और वैश्विक कंपनियों के लिए यहां व्यापक अवसर हैं। एक रिपोर्ट।
2: वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वित्त मंत्री ने अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में आयोजित G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक से इतर 3M के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलियम ब्राउन के साथ वार्ता की। बैठक में इस बात पर विचार किया गया कि भारत अब केवल बड़े उपभोक्ता बाजार तक सीमित नहीं है बल्कि उन्नत विनिर्माण, प्रौद्योगिकी विकास और नवाचार आधारित उत्पादन का वैश्विक मंच बनता जा रहा है। श्रीमती सीतारामन ने 3M से स्थानीयकरण बढ़ाने, अनुसंधान और विकास गतिविधियों का विस्तार करने तथा नई प्रौद्योगिकियों के विकास में अधिक निवेश करने का आग्रह किया। 3M के चेयरमैन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलियम ब्राउन ने भारत में उपलब्ध विशाल प्रतिभा संसाधन की सराहना की। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: भारतीय नौसेना ने आज मुंबई के नौसेना गोदी में निस्तार श्रेणी के दूसरे डाइविंग सपोर्ट पोत INS निपुण को अपने बेड़े में शामिल किया। समारोह में नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने कहा कि INS निपुण पानी के नीचे चलाए जाने वाले विशेष अभियानों में महत्वपूर्ण साबित होगा।
2: आज हम तेजी से बदलती रणनीतिक परिस्थितियों के दौर से गुजर रहे हैं। समुद्री क्षेत्र में चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। भविष्य के खतरों का सटीक अनुमान हमेशा संभव नहीं है, लेकिन संभावित खतरों के लिए तैयार रहना और उनसे प्रभावी ढंग से निपटने की क्षमता विकसित करना आवश्यक है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि खतरा कहीं भी और कभी भी सामने आए, हम उसका समय पर प्रभावी ढंग से सामना करें।
1: इसे विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR के बाद मसौदा जारी कर दिया है। सूची के अनुसार 97 लाख से अधिक मतदाता इसमें शामिल हैं, जबकि 47 लाख से अधिक मतदाताओं का नाम सूची से हटाया गया है। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया है कि जिन मतदाताओं के नाम सूची में नहीं है वे 30 सितम्बर तक Form 6 और आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने दावे दाखिल कर सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची नवम्बर में जारी की जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि इस वर्ष दिसंबर में बांग्लादेश के साथ समाप्त हो रहे 30 वर्षीय गंगा पद्मा जल बंटवारे समझौते के नवीनीकरण से पहले राज्य के हितों की तरफ ध्यान दिया जाए। राज्य सरकार ने नए समझौते में पर्यावरण संरक्षण और भविष्य की जल आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने की मांग की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और यूट्यूब पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
1: नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है। 4,247 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। सभी 8 प्रभावित जिलों में राहत और बचाव अभियान तेजी से जारी है। एक रिपोर्ट।
4: नेपाल में 5 से अधिक जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़े ढांचों में 900 से अधिक श्रमिकों के फंसे होने की आशंका है। भारत और अन्य देशों के विशेषज्ञों के सहयोग से बचाव दल त्रिशूली 3A सहित कई जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़ी सुरंगों में तलाश की जा रही है। तिब्बत में मृतकों की संख्या 16 हो गई है जबकि 546 लोग लापता है। भारतीय बचाव दल चिली में और लांगटांग में पनबिजली संयंत्रों पर नेपाल की सेना के साथ मिलकर काम कर रहा है।

0: है। नेपाली सेना के प्रवक्ता राजा राम बस्नेट ने बताया कि अत्यधिक मलबे के कारण सुरंगों तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। लगभग 21,000 सुरक्षाकर्मी राहत और बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: इस बीच नेपाल में भीषण बाढ़ और जल ग्रहण क्षेत्रों में तेज बारिश के कारण बिहार में गंडक और कोसी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नदी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए वाल्मीकि नगर बैराज के सभी 36 गेट और कोसी स्थित बीरपुर बैराज के 56 में से 25 गेट खोल दिए गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटों में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है। मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर बाढ़ की स्थिति ने हालात को जटिल बना दिया है। एक रिपोर्ट।
2: पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। शहडोल में बाणसागर डैम में पानी बढ़ने से कुछ समय के लिए डैम के गेट खोलने पड़े। गोरगी बांध फूटने से कई इलाकों में पानी भर गया, जबकि तेज बहाव ने रामघाट के बड़े पुल को भी नुकसान पहुंचाया। मौसम विभाग ने आज रीवा, मऊगंज, मेहर, सीधी, उमरिया, शहडोल, डिंडोरी, अनूपपुर, मंडला, सिवनी और बालाघाट में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: इस बीच मौसम विभाग ने आज ओडिशा और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। कल तक बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड और सभी पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश का अनुमान है। फुटबॉल में भारत की अंडर 20 टीम आज ताशकंद में एएफसी अंडर 20 एशियन कप चीन 2027 क्वालिफायर अभियान की शुरुआत सीरिया के साथ मुकाबले से करेगी। मेजबान उज्बेकिस्तान और बांग्लादेश के साथ ग्रुप बी में शामिल भारतीय टीम 2006 के बाद पहली बार एएफसी अंडर 20 एशियन कप में वापसी के उद्देश्य से क्वालिफायर में उतर रही है। महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट के ग्रुप बी मुकाबले में आज बांग्लादेश का सामना इंडोनेशिया से होगा। दुबई में यह मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में एक बड़े उलटफेर में सर्बिया के नोवाक जोकोविच पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गए हैं। उन्हें अर्जेंटीना के मारियानो नावोन से हार का सामना करना पड़ा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में बैंकिंग और क्रेडिट तक पहुंच के माध्यम से वित्तीय समावेशन बढ़ाने और नागरिकों को सशक्त बनाने पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 0112331 0481 और 2371717। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। सरकार ने सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के दूसरे चरण के सभी 6 स्तंभों को अधिसूचित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निफ्ट के विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। भारतीय नौसेना ने गोताखोरी और गहरे पानी के नीचे के अभियानों में सहायता के लिए आईएनएस निपुण को अपने बेड़े में शामिल किया। नेपाल में अचानक आई भीषण बाढ़ के बाद राहत और बचाव अभियान तेज। मृतकों की संख्या बढ़कर 903 हुई, 4,000 से अधिक लोग अब भी लापता। और फुटबॉल में भारत आज ताशकंद में एएफसी अंडर 20 एशियाई कप क्वालिफाइंग अभियान में सीरिया से मुकाबला करेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ఆకాశవాణి సమయం 5:50 వస్తోంది. ఉర్దూలో ప్రాంతీయ వార్తలు వింటారు.
1: ये आकाशवाणी हैदराबाद है. अब आप फखरुद्दीन के साथ इलाकाई खबरें सुन रहे हैं. पेश है सुर्खियां. हैदराबाद में मूसी नदी में 150,000 क्यूजिक तक सैलाबी पानी आने के बावजूद काबिले बर्दाश्त मूसा रामबाग हाई लेवल ब्रिज का वजीर आला रेवंत रेड्डी ने इफ्तिताह किया. वजीर ज़राअत तुम्मला नागेश्वर राव ने बताया कि अग्री स्टेक पर मबनी खाद की तकसीम के निजाम में पहला संगमेल मुकम्मल करने पर मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना के लिए 175 करोड़ रुपए की तरगीबी रकम मंजूर की है. रियासत के सरकारी अस्पतालों में फर्टिलिटी और IVF खिदमात को मजीद वसत देने की वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने ओहदेदारों को हिदायत दी. और मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने आज महबूब नगर जिले के दौरे के दौरान मुकामी रुकन पार्लियामेंट डी के अरुणा के हमरा महबूब नगर रेलवे स्टेशन पर जारी जदीद कारी के कामों का मुआयना किया. और अब पेश है खबरों की तफसील. हैदराबाद में मूसा रामबाग हाई लेवल ब्रिज का वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कुछ देर कबल इफ्तिताह किया. 52 करोड़ रुपयों की लागत से तामीर किए गए इस पुल को इस तरह डिजाइन किया गया है कि मूसी नदी में 150,000 क्यूजिक तक सैलाबी पानी आने की सूरत में भी कोई दुश्वारी पेश न आए. पुल की तामीर से अंबरपेट और मूसा रामबाग के दरमियान आबोदरफ्त मजीद बेहतर होने की तवक्को है. रियासती वजीर ज़राअत तुम्मला नागेश्वर राव ने बताया कि अग्री स्टेक पर मबनी खादों की तकसीम के निजाम में पहला संगमेल मुकम्मल करने पर मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना के लिए 175 करोड़ रुपए की तरगीबी रकम मंजूर की है. मरकजी वजीर ज़राअत की जानिब से आज जारी किए गए मकतूब में कहा गया है कि रियासत ने मुकर्रा मियार मुकम्मल कर लिए हैं. ये रकम SASCI स्कीम के तहत डिजिटल ज़राअत के शोबे में फराहम की जाएगी. वजीर ने बताया कि किसान रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करने पर मरकजी हुकूमत पहले ही 424 करोड़ रुपए की तरगीबी रकम तेलंगाना को फराहम कर चुकी है. रियासत के सरकारी अस्पतालों में फर्टिलिटी और IVF खिदमात को मजीद उसत देने के लिए तिब्बी व सेहत के वजीर दामोदर राज नरसिम्हा ने ओहदेदारों को हिदायत दी है. सेक्रेटरीट में मुनक्किदा जायजा इजलास में वजीर ने गांधी और पेटला बुरुज के IVF मराकज में अब तक 39,802 अफराद को खिदमत फराहम किए जाने की तफसीलात हासिल किए. ओहदेदारों ने बताया कि रियासत में 477 IRTO सरोगेंसी मराकज मौजूद हैं. इनमें 379 मराकज का मुआयना किया गया है. रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने रियासत में प्रजा पालाना हुकूमत की कामयाबी के 1000 दिन की तकमील पर खुशी का इजहार किया. उन्होंने कहा कि BRS की नाकारा हुकूमत को शिकस्त देकर रियासत में अवामी हुकूमत कायम की गई है. प्रजा पालाना हुकूमत में खवातीन को मुफ्त बस में सफर की सहूलत, कर्जों की माफी, बारीक चावल की सप्लाई, इंद्रमा मकानात की फराहमी जैसे फलाही स्कीमें कामयाबी के साथ चल रहे हैं और मुस्तकबिल में भी ये सिलसिला जारी रहेगा. तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत के 1000 दिन मुकम्मल होने के मौके पर रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट व OBC बहबूद पूनम प्रभाकर ने कहा कि आवाम से किए गए वादों को मरहलावार पूरा किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि खवातीन को मुफ्त बस में सफर की सहूलत के जरिए 12,075 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचा है. रैतु भरोसा के तहत 36,000 करोड़ रुपए और किसानों की कर्ज माफी के लिए 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं. तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत के 1000 दिन मुकम्मल होने पर TPCC के सदर महेश कुमार गौड़ ने अवाम और कांग्रेस पार्टी के कारकुनों को मुबारकबाद पेश की. उन्होंने कहा कि जिरे शोबे पर 1,75,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं. महेश कुमार गौड़ ने बताया कि 20,000 करोड़ रुपए से जायद की रकम किसानों के कर्ज माफ किए गए हैं. 25,35,000 किसानों को फायदा पहुंचा है. उन्होंने कहा कि रैतु भरोसा की रकम बढ़ाकर फी एकड़ 12,000 रुपए कर दी गई है. रियासत में जारी रेलवे प्रोजेक्ट से मुतालिक ज़ेरे इल्तिवा उमूर को तेजी से हल करने की चीफ सेक्रेटरी संजय जाजू ने ओहदेदारों को हिदायत दी. सेक्रेटरीट में जुनूबी वस्ती रेलवे के जनरल मैनेजर संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ मुनक्किदा इजलास में चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि 50,870 करोड़ रुपये की लागत से 17 रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए 2,023 किलोमीटर तवील तौसी काम के DPR तैयार किए गए हैं. इजलास में अराजी के हुसूल, मुख्तलिफ इदारा, इजाजत नामे, रेलवे अंडरपासेस और ओवर ब्रिजेस

0: तेलंगाना पोस्टल सर्कल के जेर एहतमाम 1 से 3 सितंबर तक हैदराबाद में दूसरे ऑल इंडिया पोस्टल पैरा बैडमिंटन और पैरा टेबल टेनिस टूर्नामेंट का इनेकाद किया जाएगा। तेलंगाना सर्कल के चीफ पोस्ट मास्टर जनरल DSV राममूर्ति ने ये इतला दी। उन्होंने बताया कि मोइनाबाद के फायरफॉक्स स्पोर्ट्स एंड रिजर्व रिजॉर्ट्स में मुनक़िद होने वाली इफ्तिताही तकरीब में चेवरला के रुकन पार्लियामेंट कुंडा विश्वेश्वर रेड्डी मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगे। मुल्क की 11 रियासतों से 60 से ज्यादा पैरा एथलीट्स मुख्तलिफ जुमरों में मुकाबला करेंगे।
1: 11 సర్కిల్స్ నుంచి 60 పార్టిసిపెంట్స్ వస్తున్నారు. సెప్టెంబర్ ఫస్ట్ నుంచి సెప్టెంబర్ థర్డ్ సెప్టెంబర్ ఫస్ట్ న మెయిన్ ఈవెంట్ విల్ బి ఇనాగరేటెడ్ బై ఆనరబుల్ ఎంపీ ఫ్రమ్ చెవేళ్ల శ్రీ కొండ విశ్వేశ్వర రెడ్డి గారు. డిపార్ట్మెంట్ చేపట్టే వెల్ఫేర్ కార్యక్రమాల్లో భాగంగా ఈ పారా ఈవెంట్స్ లాస్ట్ ఇయర్ నుంచే స్టార్ట్ అయ్యాయి. ప్రీవియస్ ఇయర్ ఛత్తీస్గఢ్ లో ఇవి జరిగాయి, పారా టేబుల్ టెన్నిస్ అండ్ పారా బ్యాడ్మింటన్ ఈవెంట్. రెండో అవకాశం తెలంగాణ సర్కిల్ కి దక్కింది. ఈ 3 రోజులు జరిగే ఈ ఈవెంట్ లో పార్టిసిపేట్ చేసే ఈ స్పెషల్లీ ఏబుల్డ్ పార్టిసిపెంట్స్ అందరినీ ఎంకరేజ్ చేయవలసిందిగా వీఆర్ రిక్వెస్ట్ ఇచ్చండి.
0: वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में चल रहे प्रजा पालाना हुकूमत के 1000 दिन मुकम्मल हो गए हैं। इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर के दफ्तर ने एक हुक्मनामा जारी करते हुए इस बात की जानकारी दी। CMO के मुताबिक तेलंगाना भर में तरक्की, समाजी इंसाफ, गुरुहा ज्योति, खवातीन को मुफ्त बस में सफर की सहूलत, किसानों के कर्ज माफी जैसी कई फलाही स्कीमें कामयाबी के साथ चल रही हैं और जिसका आवाम को बराह रास्त तौर पर फायदा पहुंच रहा है। इसी तरह रियासत की आमदनी में इजाफे के साथ साथ IT और ज़रई शोबे में भी खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल कर ली गई है। कानून साज काउंसिल की कमेटियों का इब्तदाई इजलास आज कानून साज काउंसिल के इजलास हाल में मुनक्किद हुआ। चेयरमैन गुत्ता सुखेंदर रेड्डी, असेंबली स्पीकर गड्डम प्रसाद कुमार और डिप्टी चेयरमैन बंडा प्रकाश ने इजलास में शिरकत की। इस मौके पर तखमीनियों की कमेटी, जंगलात व हयात और माहौलियात की कमेटी, सहूलियात कमेटी और लाइब्रेरी कमेटी के चेयरमैनों और अरकान का खैर मकदम किया गया। चेयरमैन गुत्ता सुखेंद्र रेड्डी ने कहा कि कमेटियों को अवामी रुकूमात के मौसर इस्तेमाल और हुकूमत की जानिब से नाफिज की जाने वाली स्कीमों पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। रियासत में खवातीन की हिफाजत के मामले में हुकूमत के रवैये और BRS कानून साज असेंबली के नायब कायद हरीश राव ने शदीद एतराज किया। गुरुकुल में तालीम हासिल करने के बाद नर्स की हैसियत से खिदमत अंजाम देने वाली एक नौजवान खातून के तुकगुड़ा में बहिमाना कत्ल पर रद्दअमल जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि कत्ल के बाद असमत दरी किए जाने की इत्तला तशवीशनाक हैं। हरीश राव ने इल्जाम आयद किया कि कांग्रेस हुकूमत के दौर में अमन व अमान की सूरत हाल बिगड़ गई है। माहौलियात के तहफ्फुज़ और हरियाली में इजाफे के मकसद से मिट्टी के बने गणेश और सीड गणेश की पूजा करने की मारूफ फिल्म अदाकार चिरंजीवी ने अपील की। उन्होंने ग्रीन इंडिया चैलेंज की जानिब से तैयार करदा सीड गणेश की मूर्तियों को अपनी रिहाइशगाह पर रूनुमाई की। गणेश उत्सव 2026 की तैयारियों के सिलसिले में GHMC के मरकजी दफ्तर में एक राबता इजलास मुनक्किद हुआ। GHMC कमिश्नर ने भाग्यनगर गणेश उत्सव कमेटी के नुमाइंदों, हैदराबाद सिटी पुलिस, वाटर बोर्ड्स, HMDA, हाइड्रा, महकमे बिजली समेत मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। कमिश्नर ने बताया कि बालापुर से टैंक बंड तक गणेश जुलूस के रास्ते पर गणेश एक्शन टीमें तैनात की जाएगी। तेलंगाना ओपल स्कूल सोसाइटी ने SSC और इंटरमीडिएट कोर्सेज में दाखिलों के लिए दरखास्त जमा करने की आखिरी तारीख में तौसी कर दी है। टास्क के डायरेक्टर ने बताया कि तालीम

0: 2026-27 के लिए मुकर्रर फीस के साथ ऑनलाइन दरखास्तें 21 सितंबर से 15 सितंबर तक वसूल की जाएगी। और अब आखिर में सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। हैदराबाद में मूसी नदी में 1,50,000 क्यूजिक सैलाबी पानी आने के बावजूद काबिले बर्दाश्त मूसा रामबाग हाई लेवल ब्रिज का वजीर आला रेवंत रेड्डी ने इफ्तिताह किया। वजीर ज़राअत तुम्मला नागेश्वर राव ने बताया कि अग्री स्टेक पर मबनी खादों की तकसीम के निजाम में पहला संगमेल मुकम्मल कर लिया गया है। रियासत के सरकारी अस्पतालों में फर्टिलिटी और IVF खिदमात को मजीद वसत देने की वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने अहदेदारों को हिदायत दी। और मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने आज महबूब नगर के दौरे के दौरान रेलवे स्टेशन पर जारी जदीद कार्य के कामों का मुआयना किया। ये आकाशवाणी हैदराबाद है। अब इलाकाई खबरें खत्म हुई।
1: ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन के साथ बिश्केक में द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन से अलग हुई बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने पश्चिम एशिया क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की। बाद में प्रधानमंत्री ने किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादो जापारोव से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं के बीच आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग को और बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा के पहले दिन आज राजधानी बिश्केक में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद किया।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिश्केक में भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ आत्मीय संवाद किया। प्रधानमंत्री ने भारत और किर्गिज गणराज्य के बीच मैत्री संबंधों को मजबूत करने में भारतीय समुदाय की ऊर्जा, उत्साह और महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। अपनी किर्गिस्तान यात्रा के दौरान श्री मोदी ने आज बिश्केक स्थित महात्मा गांधी स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री कल शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
1: पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए 4थे भारत जर्मनी पर्यावरण मंच की बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव तथा जर्मनी के पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण, जलवायु संरक्षण और परमाणु सुरक्षा मंत्री कार्स्टेन श्नाइडर इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग को अधिक मजबूत करने और व्यावहारिक सहयोग को बढ़ाने के लिए पर्यावरण संरक्षण तथा जलवायु नीति से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होगी। सरकार ने देश में चिप निर्माण इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ सेमिकॉन योजना के दूसरे चरण को अधिसूचित किया है। इसके साथ भारत आने वाले वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग बाजार का लगभग 10% हिस्सा हासिल कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में बताया कि देश ने 10 साल के लक्ष्य के मुकाबले 4 साल में 85,000 सेमीकंडक्टर इंजीनियरों को तैयार करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार का ध्यान वेफर फैब्रिकेशन से लेकर चिप उत्पादन तक देश को वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में मजबूती से स्थापित करने पर है।
3: वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग को भरोसा है कि आने वाले दशकों में भारत बड़े निवेश के लिए एक प्रमुख केंद्र बनेगा। इसका प्रमाण हमें सेमिकॉन 1 के तहत मंजूर की गई परियोजनाओं से मिलता है। इनमें कई इकाइयों ने भूमि पूजन के केवल 13 महीने के भीतर व्यावसायिक उत्पादन शुरू किया है। इसी तेज गति ने वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग का भारत पर भरोसा और मजबूत किया है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि वस्त्र और परिधान क्षेत्र न केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है बल्कि लाखों लोगों को रोजगार और आजीविका भी प्रदान करता है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है। 4,247 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। सभी 8 प्रभावित जिलों में राहत और बचाव अभियान तेजी से जारी है। इस बीच नेपाल में भीषण बाढ़ और जलग्रहण क्षेत्रों में तेज बारिश के कारण बिहार में गंडक और कोसी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। हालांकि पिछले 24 घंटों में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी

0: చిత్రగీతాలు విన్నారు. ఆకాశవాణి సమయం 8:45 వస్తోంది. మరికొద్ది క్షణాల్లో సమాచార సంధ్య ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి ప్రసారం.
1: నమస్కార్, ఆకాశవాణి సే సమాచార్ సంధ్యా కి సాథ్ మే కనకలతా. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से व्यापार, ऊर्जा और रक्षा मुद्दों पर चर्चा की. उन्होंने कहा, भारत यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के हर प्रयास का समर्थन करता है. प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन के साथ बातचीत में नौवहन की स्वतंत्रता और नागरिक सुरक्षा पर बल दिया. प्रधानमंत्री ने किर्गिज गणराज्य और आर्मेनिया के नेताओं से भी मुलाकात की. वे कल शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे. बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे पर समझौते से

लंबे समय से चले आ रहे विवाद का समाधान। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मृतकों की संख्या 900 से अधिक हुई। उपकरणों की कमी से राहत और बचाव कार्य प्रभावित। 4200

0: व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों व्यापार और निवेश, ऊर्जा और रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और रूस के बीच सहयोग का नई ऊंचाइयों तक पहुंचना बहुत संतोष का विषय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
1: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और करता रहेगा।
1: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देते। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कुछ ही दिनों में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।
1: कुछ दिनों बाद भारत ब्रिक्स समिट का आयोजन कर रहा है। सभी भारतवासी भारत में आपका स्वागत करने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। आपकी यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों को भी बल मिलेगा और ब्रिक्स के अंतर्गत संवाद और सहयोग भी सशक्त होगा।
0: राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन के साथ बिश्केक में द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन से अलग हुई बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने पश्चिम एशिया क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने भारत के रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और नौवहन तथा वाणिज्य की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर भी बल दिया। बाद में प्रधानमंत्री ने किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादो जापारोव से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बिश्केक में आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने रक्षा, आर्थिक, फार्मा, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, संस्कृति और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री कल बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत और कतर के बीच लंबे समय से मजबूत साझेदारी है जिसमें ऊर्जा सहयोग एक प्रमुख आधार है। श्री पुरी ने कतर में भारत के नवनियुक्त राजदूत डॉ के शेखर रेड्डी से मुलाकात की। श्री पुरी ने पेट्रोनेट एलएनजी और कतर एनर्जी के बीच 20 वर्ष के एलएनजी समझौते का उल्लेख किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले वित्त वर्ष के इसी अवधि में यह वृद्धि दर 6.9% थी। वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास दर मजबूत बनी हुई है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी में भी 10.3% की बढ़ोतरी हुई। मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग ने कहा कि सभी क्षेत्रों में वृद्धि बेहद सकारात्मक है।
3: ओवरऑल ग्रोथ इन ऑल सेक्टर्स हैज बीन वेरी पॉजिटिव और ये यही दर्शाता है कि जो प्रकार से इंटरवेंशन हुए हैं सरकार के वो इम्पैक्ट रख रहे हैं और जबकि ओवरऑल हालात में चेंजेस है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में, उसके बावजूद ग्रोथ रेट इतनी पॉजिटिव है। प्राइवेट और सरकारी दोनों के ही कारण फिक्स कैपिटल ग्रोथ में होता है और 12%

0: उनका ये भी दर्शाता है कि जो फ्यूचर क्वार्टर्स की ग्रोथ है उसका भी हम एक अंदेशा देता है कि क्या है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि को बड़ी उपलब्धि बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये उपलब्धि देश के लोगों की सामूहिक शक्ति और दृढ़ता को दर्शाती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि इस मजबूत आर्थिक प्रदर्शन का श्रेय देश के लोगों और उनकी कड़ी मेहनत को जाता है। वित्त मंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार द्वारा किए गए सुधार और अर्थव्यवस्था के कुशल प्रबंधन के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी जीडीपी वृद्धि की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व का प्रमाण है। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। एक रिपोर्ट।
2: गृहमंत्री ने कहा कि इस समझौते से पूर्वी भारत में लंबे समय से चल रहे जल विवाद का समाधान हो गया है। उन्होंने कहा कि समझौते से बिहार और झारखंड के बड़े ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों किसानों को सिंचाई के लिए और लोगों को पीने का पानी उपलब्ध होगा। श्री शाह ने कहा कि इससे बिहार के भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, अरवल, गया और पटना को पीने और सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। इसके अलावा झारखंड के पलामू, गढ़वा और अन्य क्षेत्रों में भी सिंचाई और पीने के लिए पानी उपलब्ध होगा। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के प्रति आभार व्यक्त किया। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: सरकार ने देश में चिप निर्माण इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ सेमिकॉन योजना के दूसरे चरण को अधिसूचित किया है। इसके साथ भारत आने वाले वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग बाजार का लगभग 10% हिस्सा हासिल कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में बताया कि भारत में विकसित हो रहे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम से प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की भी उम्मीद है।
3: फैब्रिकेशन में, पैकेजिंग में, इक्विपमेंट में, मटेरियल्स में, इन सब में ट्रेनिंग दी जा रही है और जिस तरह का इकोसिस्टम बन रहा है बहुत जल्दी 50-60 हजार डायरेक्ट जॉब्स हर साल इसमें क्रिएट होंगे। ऑलरेडी डिजाइन में 50-60 हजार डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं। अभी मैन्युफैक्चरिंग में भी इतना लेवल का इसमें जॉब्स क्रिएट होंगे।
1: स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आज रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के साथ सक्रिय शासन और समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित बहुआयामी मंच पीएम प्रगति के अंतर्गत टीबी उन्मूलन प्रयासों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए अंतर मंत्रालयी समन्वय को मजबूत करने पर बल दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने एसिड की खुदरा बिक्री को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 2013 में दिए गए निर्देश के बावजूद एसिड की आसानी से उपलब्धता को लेकर चिंताओं के बीच आज केंद्र सरकार से पूछा है कि एसिड की खुदरा बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए या इसे और कड़े नियमों के अंतर्गत लाया जाना चाहिए। न्यायालय ने केंद्र, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 6 सप्ताह के भीतर एसिड हमले के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए उचित नीति तैयार करने का भी निर्देश दिया है। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान के बाद मसौदा सूची जारी कर दिया है। सूची के अनुसार 97 लाख से अधिक मतदाता इसमें शामिल हैं, जबकि 47 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया है कि जिन मतदाताओं के नाम सूची में नहीं हैं, वे 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने दावे दाखिल कर सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची नवंबर में जारी की जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: ये आकाशवाणी है। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के बाद बचाव अभियान में लगे सुरक्षा कर्मियों को आधुनिक उपकरणों और हेलीकॉप्टरों की कमी के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास

0: बर्फ और चट्टानों के ढहने तथा हिमस्खलन के कारण आई इस बाढ़ ने भोटे कोशी नदी के किनारे के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे घर, सड़कें और पुल नष्ट हो गए और पनबिजली परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गई। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है, जबकि 4,247 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। नेपाल सेना, नेपाल पुलिस और सशस्त्र पुलिस बल के जवानों को प्रभावित क्षेत्रों में बड़ी संख्या में तैनात किया गया है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि आधुनिक बचाव उपकरणों की कमी के कारण खतरनाक इलाकों में बचाव अभियान विशेष रूप से कठिन हो रहा है। प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने बाढ़ को विनाशकारी प्राकृतिक आपदा बताया है। भारत ने नेपाल में बचाव कार्यों और पीड़ितों की पहचान में सहायता के लिए विशेष दल तैनात किए हैं। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश और कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले दो दिन के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ओडिशा के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश दर्ज की गई है। कई इलाकों में जलभराव के कारण जनजीवन प्रभावित है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में बैंकिंग और क्रेडिट तक पहुंच के माध्यम से वित्तीय समावेशन बढ़ाने और नागरिकों को सशक्त बनाने पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। एएफसी अंडर 20 फुटबॉल एशियाई कप 2027 के क्वालिफायर में भारत ने आज सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। ताशकंद के दोस्तलिक स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सिंगा मयूम शमी ने 86वें मिनट में भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल किया। भारतीय टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को मेजबान उज्बेकिस्तान से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में एससीओ शिखर सम्मेलन से अलग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से व्यापार, ऊर्जा और रक्षा मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा, भारत यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के हर प्रयास का समर्थन करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिश्कियान के साथ बातचीत में नौवहन की स्वतंत्रता और नागरिक सुरक्षा पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने किर्गिज गणराज्य और आर्मेनिया के नेताओं से भी मुलाकात की। वे कल शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे पर समझौते से लंबे समय से चले आ रहे विवाद का समाधान। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मृतकों की संख्या 900 से अधिक हुई और एफसी अंडर 20 फुटबॉल एशियाई कप के क्वालिफायर में भारत ने सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds talks with Russian President Vladimir Putin in Bishkek, focusing on trade, energy and defense, says India backs every effort to end war in Ukraine. Prime Minister Modi stresses freedom of navigation and civilian protection during meeting with Iran President Masoud Pezeshkian. Prime Minister also meets Kyrgyz Republican Armenian leaders to address SCO summit tomorrow. India's GDP jumps to 7.8% in the first quarter of the current fiscal despite global headwinds. Bihar and Jharkhand reach agreement on Son River water sharing, settling long-standing dispute. Relief and rescue efforts in Nepal flash flood tragedy hit by equipment shortage as death toll crosses 900, over 4,000 remain missing. And in football, India begin campaign at Under 20 Asian Cup qualifiers with 1-0 win over Syria at Tashkent. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi held bilateral talks with Russian President Vladimir Putin on the sidelines of the Shanghai Cooperation Organization SCO summit at Bishkek in Kyrgyz Republic today. The discussions focused on key areas of India-Russia bilateral cooperation, including trade and investment, energy and defense. During the meeting, Prime Minister Modi

नमस्कार दोस्तों, चर्चा के साप्ताहिक मंच पब्लिक स्पीक में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं मुनीश शर्मा। दोस्तों, एक दौर था जब बैंकों के बड़े बड़े दरवाजे देखकर आम आदमी हिचकिचाता था, साहूकारों के चंगुल में फंसकर पीढ़ियां कर्जे में डूब जाती थीं। लेकिन आज वक्त बदला है। आज आपकी जेब में रखा मोबाइल ही आपका बैंक खाता बन गया है, या कहें वित्तीय समावेशन का औजार बन गया है। चाहे वो प्रधानमंत्री जनधन खाता हो, रेड़ी पटरी वालों के लिए स्वनिधि योजना हो, या छोटे कारोबार के लिए मुद्रा लोन हो, वित्तीय समावेशन ने आखिरी पायदान पर खड़े आदमी को भी ताकत दी है और उसे सशक्त बनाया है। जब एक महिला को स्वयं सहायता समूह से लोन मिलता है और वो अपनी सिलाई की दुकान या फिर बुटीक खोलती है, तो वो सिर्फ एक दुकान नहीं खोलती बल्कि एक पूरा परिवार आत्मनिर्भर बनता चला जाता है। यही तो है असली नागरिक सशक्तिकरण, जब पैसा सीधा आपके खाते में आता है बगैर किसी बिचौलिए के, तो व्यवस्था पर भरोसा और बढ़ता है। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों एक ऐसे बदलाव की जो देश के आम नागरिक के जीवन को और बेहतर और स्वाभिमानपूर्ण बना रहा है। और आज इसी बदलाव की जानकारी पर आपसे चर्चा के लिए हमने

0: आमंत्रित किया है आर्थिक विश्लेषक शुभमोय भट्टाचार्य जी को और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व महाप्रबंधक और विशद अनुभव के धनी रमेश कुमार अरोड़ा जी को। स्टूडियो में आप दोनों ही विशेषज्ञों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है।
1: नमस्कार सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
0: और दोस्तों हम बताएं कि विषय जो है हमारा बैंकिंग और क्रेडिट तक पहुंच के माध्यम से वित्तीय समावेशन बढ़ाने और नागरिकों को सशक्त बनाने पर परिचर्चा। दोस्तों हमारे स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हैं, नंबर हैं 0112331081 और 23717 1107 23717 106 और 233-1444। लेकिन अगर आप दिल्ली के बाहर से फोन कर रहे हैं तो भूलिए नहीं 011 जरूर डायल कीजिए। और व्हाट्सएप नंबर की भी सुविधा है जिस पर आप हमें सवाल अपने भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 9289094044। तो दोस्तों हम इंतजार करेंगे आपकी जिज्ञासाओं का और बात करेंगे हम अपने विशेषज्ञों से भी। और मैं देख रहा हूं कि अंशु कुमार जी जुड़ रहे हैं हमसे पटना बिहार से, सुनते हैं उनका सवाल जी। जी अंशु कुमार जी बोलिए।
2: नमस्कार सर।
0: जी जी जी क्या है आपकी जिज्ञासा? हाँ हाँ
2: स्वागत। सवाल यही था जब हम लोग को जब भी ब्याज है हम लोग हेलो
0: जी जी
2: हम लोग जब भी ब्याज है तो हम लोग को जो पैसा मिलता है तो बैंक में पैसा निकालने से क्या क्या हम लोग को करना चाहिए? क्या हम लोगों को ओटीपी भी बताना चाहिए? अगर ओटीपी बताएंगे तो क्या क्या हो सकता है? और आधार कार्ड नंबर और खाता संख्या इसे हम जब बता देंगे तो क्या क्या होगा?
0: बैंक से पैसा निकालने के विषय में इनका ये सवाल है कि ओटीपी नंबर अगर कोई और पूछता है तो संभवतः मैं जितना समझ पाया इन्होंने पूछा है तो क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? क्या यदि कोई और पूछ रहा है तो क्या वो बताना चाहिए?
1: नहीं बिल्कुल नहीं, कभी भी कोई भी बैंक आपसे ओटीपी की जानकारी नहीं मांगेगा ना आपकी पूरा आधार नंबर की कोई डिटेल मांगेगा। ओटीपी केवल आपका पर्सनल के लिए है। जब भी आप बैंक से पैसा निकाल रहे हैं ऑनलाइन निकाल रहे हैं तो आपको ओटीपी खुद आपको डालना है और उसी हिसाब से आपका पैसा ट्रांसफर हो पाएगा। या निकालना है एटीएम पर जा रहे हैं तो आपको अपना पिन जो है अपने आप कॉन्फिडेंशियल रखना है, ना कि किसी को बताना है। किसी को बताएंगे तो फ्रॉड होने के चांस पूरे हैं।
0: जी हाँ, ओटीपी तो दरअसल आपके पास है और उसे यदि आप किसी के साथ साझा करते हैं तो उसमें बेहद जोखिम है। और जैसा कि आपने बताया हमें महाप्रबंधक आप रहे हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के रमेश कुमार अरोड़ा जी बता रहे थे, तो आप इस सलाह को जरूर आप फॉलो कीजिए, इस पर अमल कीजिए और अपना ओटीपी जो है किसी को बताइए नहीं। और अब मैं ये प्रश्न करना चाह रहा हूँ शुभमोय भट्टाचार्य जी से जो आर्थिक विश्लेषक हैं कि आप हमें बताइए कृपया हमारे श्रोताओं को और हमें समझाइए कि ये जो वित्तीय समावेशन है फाइनेंशियल इंक्लूजन है दरअसल कैसे इसे समझा जाए कि क्यों इसकी जरूरत पड़ी?
3: सबसे पहले आकाशवाणी को नमस्कार मुझे इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए।
0: नमस्कार जी।
3: मैं वित्तीय समावेशन बहुत बड़ी शब्द है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी इस पर भी हम बहुत सारे शोध पत्र लेख वगैरह प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन मैं सीधा उदाहरण देता हूं। आज किसी भी भारत के कोने में कोई भी खुदरा दुकान में आप जाइए, सबसे पहले दुकानदार आपको किसी भी चीज का बिक्री के लिए सबसे पहले वो QR कोड सामने पकड़ा देगा। उनको पता भी नहीं है कि QR कोड कैसे चलता है, उसके पीछे क्या टेक्नोलॉजी है, लेकिन उनको ये भरोसा है कि ग्राहक जब उनसे कोई सामान खरीदते हैं QR कोड से पेमेंट करते हैं वो पेमेंट बिल्कुल कंफर्टेबली उनके पास उनके बैंक खाते में चला जाता है। वो भी अपना जब कुछ भी चीज खरीदने जाते हैं उसी QR कोड के जरिए UPI में अपना पैसा अपना

0: खाता देख लेते हैं और खाते और खुश होकर अपना जो भी खरीदारी वगैरह है उसका निपटाना करते हैं
1: जी।
0: ये जो चीज हुआ है, लोगों को पूछने की जो जरूरत नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस जो मिल गया है उनको, जो जो अधिकार मिल गया है, मैं इसी को ही फाइनेंशियल इंक्लूजन मानूंगा कि लोग जानते हैं, समझते हैं कि बटुए में पैसे रखकर या कहीं पे कुछ भी चीजों का जो पुराने समय का जो, और पुराने समय कह रहा हूं मतलब कुछ ही साल पहले का
1: जी जी,
0: जो ये अनुभव था वो बिल्कुल लोगों के दिमाग से मानो बिल्कुल हट गया है, बिल्कुल इरेज हो गया है। मैं इसी को ही वित्तीय समावेशन मानूंगा। इसके बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारे इसके स्टेप्स हैं, बहुत सारे इसके टेक्नोलॉजी हैं और इन पर हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन ये जो कॉन्फिडेंस है कि भाई हम पैसा कहीं से भी ले सकते हैं, किसी भी तरीके से मिल सकता है, बस हमें एक QR कोड सामने होगा, वो हमारा पूरा सब काम के लिए अवेलेबल है। आज के रुपये का शायद, रुपये का चेहरा शायद बहुत जगह पे लोगों को याद नहीं होगा कि रुपये का सिंबल क्या है, लेकिन QR कोड क्या है ये बच्चा बच्चा तक समझता है। और मैं समझता हूँ ये भारतीय फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेश का ये सबसे बड़ा और सबसे पुष्ट उदाहरण है।
1: जी शुक्रिया। मैं मुखातिब होता हूं अब अरोड़ा साहब से, जो हमारे विशेषज्ञ हैं, और उनसे मैं खास तौर पर ये जानना चाहता हूं कि सरकार ने वित्तीय समावेशन के लिए, देखिए, जनधन योजना, मुद्रा लोन, पीएम स्वनिधि जैसी कई बड़ी योजनाएं शुरू की हैं, तो आपका जो ये वर्षों का अनुभव है वो क्या बताता है कि इन योजनाओं में जमीनी स्तर पर आम आदमी के जीवन को, खासकर महिलाओं और छोटे दुकानदारों को किस तरह से प्रभावित किया है? तो ये तो है हमारा आपसे सवाल, लेकिन एक और सवाल हमारे पास एक श्रोता का दिखाई दिया था अभी, लेकिन शायद अभी लाइन पर नहीं है। जी हाँ, तो आप हमें ये बताइए कि किस तरह से आम आदमी के जीवन को, खासकर महिलाओं और छोटे दुकानदारों को, इन योजनाओं ने प्रभावित किया है?
2: जैसा कि अभी भट्टाचार्य जी ने बोला है, वित्तीय समावेशन का केवल ये नहीं है कि हम एक बैंक में खाता खोलें। वित्तीय समावेशन का मतलब है कि बैंक में अकाउंट हो, उसे हम क्रेडिट सुविधा दें, छोटे जो हमारे लोग हैं या जो भी बैंक में आ रहा है उसको इंश्योरेंस की सुविधा दें, पेंशन की सुविधा दें और डिजिटल पेमेंट कराएं, तो तब हम ये मानेंगे कि हमारा वित्तीय समावेशन, केवल बैंक खाता ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ ये सारी फैसिलिटी भी हम दें। जहां तक बात है कि कितना बेनिफिट हुआ है सब लोगों को इसे वित्तीय समावेशन से, तो सबसे बड़ी बात जो है मिडिल मैन का, इनका निवारण हुआ है। जैसे गवर्नमेंट की कोई LPG की है, फर्टिलाइजर है, पेंशन है, स्कॉलरशिप है, ये पैसा जो है डायरेक्ट खाते में जमा हो रहा है, मिडिल मैन इसमें से बिल्कुल हट गया। तो कहने का मतलब सबसे बड़ा एक फायदा ये हुआ है कि जो हमारे गरीब लोग हैं, जो गांव में लोग हैं, जो बीच में, उन्हें मिडिल मैन की जरूरत नहीं है, सीधा पैसा उनके खाते में जा रहा है। दूसरा, जो इन्फॉर्मर मनी लैंडर्स हैं उनसे जो 40-50% 60% तक ब्याज पर पैसा उठाते थे, वो जब ये मुद्रा योजना आई, जब ये स्वनिधि योजना आई, इसके थ्रू क्या हुआ कि ये जो हमारे छोटे हैं, गांव में किसान हैं, जो रेड़ी पटली वाले हैं, जो सब्जी बेचने वाले हैं, इनको जो है मनी लैंडर के पास ना जाके सीधा बैंकों के साथ जोड़ा गया है वित्तीय समावेशन के थ्रू, तो उनको ये बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। साथ में डिजिटल फाइनेंस का, जैसे अभी बात बताया डिजिटल का, UPI के थ्रू सारी पेमेंट आपका UPI के थ्रू हो रही है, तो कैश का ट्रांजेक्शन जो है कम से कम हो गया। और जो रूरल क्रेडिट एसेस है वो हमारा बढ़ रहा है वित्तीय समावेशन के थ्रू। तो ये सारी चीजें होने के बाद साथ में हमें पेंशन की सुविधा मिल रही है, पेंशन की सुविधा अटल पेंशन योजना जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, और इसी तरीके से हमारी इंश्योरेंस की स्कीम है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसके थ्रू पेंशन की सुविधा भी मिल रही है, साथ में इंश्योरेंस की सुविधा मिल रही है, और डिजिटल पेमेंट भी हो रहा है, क्रेडिट की सुविधा हमारी मिल रही है, और साथ में बैंक अकाउंट PMJDY के वो भी खुल रहे हैं।
1: जी, तो आपने इन तमाम सुविधाओं की जानकारी दी हमें, जनधन योजना, मुद्रा लोन और पीएम स्वनिधि के अलावा अटल पेंशन की और जो बीमा की भी जो योजना है उनके विषय में।

0: आपने चर्चा की। तो आज हम देखें तो यूपीआई और मोबाइल बैंकिंग की वजह से वित्तीय लेन देन तो काफी आसान हो गया है, लेकिन साथ ही ऑनलाइन फ्रॉड और घोटाले भी काफी बढ़े हैं। तो डिजिटल रूप से सुरक्षित रहने के लिए आप क्या सलाह देंगे हमारे श्रोताओं को, क्योंकि प्रायः ऐसी घटनाएं हम अखबारों में पढ़ते हैं, प्रचार माध्यमों से सुनते हैं कि बहुत सारी धोखाधड़ी की जो घटनाएं हैं वो अप्रिय घटनाएं वो देखने में आती हैं, तो उनसे बचने के लिए क्या आपकी सलाह होगी?
1: ये बिल्कुल सही है कि डिजिटल पेमेंट यूपीआई के थ्रू जो हमारी पेमेंट हुई है इससे हमारा काफी सुविधा हुई है, लेकिन साथ साथ इसके साथ रिस्क भी हुए हैं जिसके लिए हमें सावधानी बरतने की बहुत जरूरत है। तो सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात है, जैसे मैंने अभी बताया आपको, ओटीपी आप किसी को शेयर ना करें, कोई अनजान कोई लिंक ना खोलें, ये सबसे जरूरी है, तभी आप इनसे बच सकते हैं। तो साथ में फाइनेंशियल लिटरेसी, जिसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी बहुत बड़ा आजकल प्रोग्राम है कि फाइनेंशियल लिटरेट करना बहुत जरूरी है। सभी को बताना पड़ेगा कि हमें जहां ये हमें फायदा हो रहा है यूपीआई से, क्योंकि डेली बेसिस पर 60 से 66 करोड़ का पर डे की जो है ट्रांजेक्शन हो रही है रफली।
0: जी जी,
1: और आप पर डे 20 ट्रांजेक्शन यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं, और 1 लाख की मॉनिटरी कैप रखी हुई है और 5 लाख की कैप रखी है अगर आप हॉस्पिटल को या कहीं टैक्स वगैरह के लिए या स्कूल वगैरह पेमेंट करें। तो जब इतना बड़ा लेन देन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो साथ में थोड़ी सावधानी बरतना जरूरी है।
0: बिल्कुल जरूरी है। और हमारे साथ एक श्रोता फिर बिहार सासाराम से जुड़ रहे हैं, अमित उपाध्याय। तो उपाध्याय जी, क्या सवाल है आपका, कहिए।
2: जी नमस्कार, जितने भी विशेषज्ञ हैं, सबसे पहले तो बहुत बहुत बहुत बहुत बधाई कि हमारे जनधन खाता जो है खुले हैं 59 करोड़, ये बहुत अच्छा दिलचस्प है। इसमें भी मैं भी कोरेस्पोंडेंस नहीं चलाता हूँ, बीसी हूँ। और मेरा एक सवाल था सर कि जैसे अभी बजट में हम लोग जैसे कि यूपीआई से जो पेमेंट हम लोग करते हैं अभी, तो यूपीआई से जो बढ़ा हुआ है इसमें कुछ चार्जेस की कुछ बात हो रही थी कि इसमें घट रहा है या बढ़ा है, इस पर थोड़ा सा हल्का सा इस पर थोड़ा प्रकाश डाल देना कि इसमें बढ़ा है या फिर घटा हुआ है। जैसे हम लोग जितना ट्रांजेक्शन करते हैं उस पर, जितना जिसे हम लोग क्यूआर कोड से जो हम लोग पेमेंट करते हैं, तो इसका इसमें हम लोग जो महीना मंथली बेसिस पे इसको हम लोग गणना करते हैं, तो उसके हिसाब से इसको कुछ चार्ज करते हैं या टैक्स वगैरह इसको थोड़ा सा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपका प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट है और हमारे विशेषज्ञ आपकी इस जिज्ञासा का समाधान बिल्कुल करेंगे।
1: हाँ, ये जो चल रहा है अब, ये न्यूज़पेपर में भी आपने पढ़ा होगा, या बात अमित जी सही बात बोल रहे हैं, लेकिन इसमें कस्टमर को कोई अलग से पेमेंट नहीं लगेगी, कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। ये अगर एमडीआर के जो चार्ज लग रहे हैं वो भी जो बड़ी ट्रांजेक्शन के लिए है, वो जो जो जैसे दुकानदार वगैरह हैं उनके ऊपर चार्जेस लगने का प्लान है, अभी भी वो हुआ नहीं है फाइनल, इस पर डिस्कशन चल रहा है। लेकिन ये क्लियर कट हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बोल दिया है कि आपको इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देने पड़ेंगे, यानी कस्टमर को इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपको कोई चार्ज नहीं देने पड़ेंगे।
0: जी, तो उम्मीद है कि आपकी इस जिज्ञासा का समाधान बिल्कुल हो गया है। और हमारे साथ राजस्थान की राजधानी जयपुर से जुड़ रहे हैं एम आर चौधरी। कहिए चौधरी साहब, क्या है आपका प्रश्न? जी जी, कहिए सवाल।
3: ये मैंने फाइनेंस में भी वहां से सेक्रेटरी को चिट लिया, उसका कोई जवाब नहीं है
0: आपका प्रश्न
3: आम पब्लिक के लिए।
0: जी, तो लगता है संपर्क कट गया है। और आपसे हम, खैर, एक और हमारा जो एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल जो हम अक्सर प्रायः लोगों से सुनते हैं, वो ये है कि ऋण लेने के लिए व्यक्ति कहीं पर जाता है तो अक्सर उसका जो क्रेडिट स्कोर है या सिबिल स्कोर जो है वो बड़ा मायने रखता है, लेकिन बहुत से लोग इस बारे में जानते नहीं है कि कैसे एक आम आदमी अपने इस क्रेडिट स्कोर को बेहतर बना सकता है। और ये जो स्कीम्स हैं, खासतौर पर ये जो समावेशन की जो हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन की ये जो योजनाएं हैं, क्या इनमें भी ये स्कोर मायने रखता है? जैसे कि हम कोई फर्ज कीजिए कि वाहन लोन लेने के लिए या मकान बनाने के लिए जाते हैं तो वो देखा जाता है, तो इस विषय में क्या व्यवस्था है?
1: जैसे प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि स्कीम है जो कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना है, इसमें कोई भी सिबिल वगैरह की जरूरत नहीं है, कोई बैंक आपसे सिबिल नहीं मांगेगा। इसमें जैसे फर्स्ट ट्रांच में 15,000 रुपये लोन मिलता है, सेकंड जो है 25,000 है, थर्ड ट्रांच में 50,000 है, तो इसमें कोई

0: हम अपना जो है बैंक बैलेंस कैसे चेक कर सकते हैं, कृपया करके आप बताइएगा।
1: हम अपना बैंक बैलेंस कैसे चेक कर सकते हैं? तो इस विषय में तो जाहिर है, चूंकि बैंकिंग से सीधे तौर पर हमारे विशेषज्ञ जुड़े रहे, तो वो आपकी जिज्ञासा का समाधान बिल्कुल करेंगे। जी
2: ऐसा है कि बैंक में जो भी आपके साथ दूसरा अकाउंट अगर होल्डर साथ में आपने रखा हुआ है, क्योंकि तो ट्रांजैक्शन होती है तो कभी दूसरा साथ में होगा, तो उसके थ्रू आप पता कर सकते हैं। और या आप अपना जो बैंक में जाके जो वहाँ का स्टाफ है उससे भी बैलेंस पता कर सकते हैं। तो यही एक तरीका है जिससे कि आप अपना बैलेंस पता कर सकते हैं।
1: शुभमोय सर, आपसे हमारी जो जिज्ञासा है वो ये है कि एआई की क्या भूमिका है इस वित्तीय समावेशन को संभव बनाने में, इसे एक विस्तार देने में? क्योंकि हमने अखबारों में पढ़ा था कि भारतीय जो रिजर्व बैंक है वो काफी इस विषय में सक्रिय रहा, तो इस पर कुछ हो सके तो प्रकाश डालिए।
3: बिल्कुल। और सबसे पहले मैं कहूंगा कि एआई, आप अभी सवाल का डिस्कशन कर रहे थे किस हमारे प्रश्नकर्ता से कि सिबिल स्कोर जिसके पास नहीं है उनको कैसे लोन मिल सकता है। तो एआई, भारत सरकार ने एक नया आयाम शुरू किया है, वो है यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस।
1: जी
3: ये एआई के मॉडल है डिजिटल फुटप्रिंट, जिससे आम जनता जिनके पास सिबिल स्कोर नहीं है या सिबिल के किसी वजह से वो आए नहीं है, तो उनका जो पेमेंट जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो क्यूआर कोड से यूपीआई से वो पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट मिल रहा है उनको, वो देखकर ही एआई एक यूनिफाइड लेंडिंग का सिस्टम समावेशन शुरू किया है। ये
1: जी
3: बहुत बड़ा आयाम है जिससे हम कह सकते हैं फ्रिक्शनलेस क्रेडिट अवेलेबल होगा भारत के हर नागरिक को। यानी कि एक वित्तीय समावेशन का ये एक इतना बड़ा चीज है जिसको हम कह सकते हैं कि क्रेडिट लेंडिंग के मामले में ये
1: जी
3: एक नया डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। और ये इतना बड़ा इसका प्रारूप तैयार हुआ है कि जिससे एपीआई बेस्ड फ्रेमवर्क से सबको सारे द लास्ट माइल जिसे हम कहते हैं जो जो भारतीय है उनको भी क्रेडिट मिलेगा, सिबिल के ऊपर या क्रेडिट स्कोर के ऊपर उनको निर्भरशील नहीं रहना पड़ेगा। तो ये
1: जी
3: आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी एक चीज है जो दुनिया में इसका कोई पैरेलल नहीं है, इस तरह का कोई एडवांसमेंट नहीं हुआ है। और
1: महत्वपूर्ण
3: ये
1: जानकारी शुभमोय जी, हम आपके पास फिर लौटेंगे। क्योंकि हमारे साथ एक श्रोता दिल्ली से हैं लाइन पर, धर्मवीर जी, कहिए क्या है आपकी जिज्ञासा।
4: मुनीर जी नमस्कार, मैं धर्मवीर गांधी का दिल्ली से बोल रहा हूँ, हमारे एक्सपर्ट को मेरा नमस्कार।
1: जी
4: सर, मैंने
1: नमस्कार।
4: पिछले साल 2025 में 29 सितंबर को एक लगभग लगभग 30 लाख की पेमेंट एक सरकारी बैंक से मैच्योर हो गई थी, तो हमने अदर बैंक से, प्राइवेट बैंक में जहाँ थोड़ा सा इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट रेट ज्यादा था, तो हमने वहाँ स्किप कर दिया था। पर वो 29 तारीख की बजाय वो हमारे को पेमेंट हमारी 3 या 4 अक्टूबर को वहाँ शो कर रही, तो ये 5 दिन हम परेशान रहे। ऐसे में हम किससे जानकारी लेते, क्योंकि वो कहते हैं कि पेमेंट तो आपकी यहाँ से निकल गई है। फिर किसी ने बताया कि ये बीच में इसका एक नेटवर्क होता है जो चेक चेक करता है कि ये फ्रॉड तो नहीं निकाली गई पेमेंट है। ऐसा भी होता है तो अच्छी बात है, पर हम लोग तो आम आदमी तो नहीं समझ पाता कि ये परेशानी हो गई है, तो टेंशन आम आदमी को ज्यादा बढ़ जाती है। इसके बारे में थोड़ा समझाएं और राय दें, धन्यवाद।
1: जी जरूर जरूर।
2: धर्मवीर जी, ऐसा है कि जो भी अगर आपकी कोई शिकायत है तो आप डायरेक्टली पहले बैंक को लिख सकते हैं, और अगर आपकी वहां से बैंक से शिकायत पूरी नहीं हो पा रही, ठीक नहीं हो पा रही, तो ओम्बड्समैन होते हैं बैंक में, आप उनको डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर वहां से भी आपको सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिल पाता तो आप आरबीआई के ओम्बड्समैन को भी अपनी शिकायत भेज सकते हैं और वहां से अपना शिकायत का निराकरण करा सकते हैं।
1: जी तो उम्मीद है कि धर्मवीर जी, आपको आपकी जिज्ञासा का ये समाधान हो गया होगा, और आप इस तरह से संपर्क करेंगे तो आपको अपनी शिकायत के समाधान में सफलता मिलेगी। जो श्रोता हमसे अभी अभी जुड़े हैं, उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक, चर्चा का साप्ताहिक मंच है ये हमारा, और आज हम बात कर रहे हैं बैंकिंग और क्रेडिट तक पहुंच के माध्यम

0: से वित्तीय समावेशन बढ़ाने और नागरिकों को सशक्त बनाने के विषय पर चर्चा। और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं आर्थिक विश्लेषक शुभ मोए भट्टाचार्य जी और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व महाप्रबंधक रमेश कुमार अरोड़ा। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। आप हमारे एक्स हैंडल @AIR News Alerts पर भी टैग Ask AIR के जरिए अपने सवाल हम तक भेज सकते हैं। ये कार्यक्रम दोस्तों हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। शुभमोय जी, आपसे हम बात कर रहे थे कि AI ने जो भूमिका निभाई है इस वित्तीय समावेशन को संभव बनाने में से विस्तार देने में, तो उसमें आपने बताया कि किस तरह से जो लैंडिंग सिस्टम है उसमें किस तरह से AI मददगार हुई है और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो AI ने संभव कर दिखाई हैं।
1: अभी जो आप प्रश्न ले रहे थे धर्मवीर जी से दिल्ली में
0: जी,
1: और जो सवाल कर रहे थे कि उनके अकाउंट में कोई कार्ड छुपी हुआ है या नहीं, कुछ कुछ कुछ इधर उधर हुआ है नहीं, इसको इस संभावना को रोकने के लिए रिजर्व बैंक ने MuleHunter.AI करके एक बहुत पावरफुल टूल निकाला है
0: जी।
1: और उस टूल का मुख्य उद्देश्य यही है कि बैंकों में कोई ऐसे अकाउंट्स जो साइबर क्राइम को प्रोत्साहन देने के लिए, साइबर क्राइम को मदद करने के लिए खुले गए हों, किसी तरीके से वो उनको ब्लॉक करना। और ये AIML पावर टूल ट्रांजैक्शन पैटर्न को, मतलब जो कि उस अकाउंट से जुड़ा हुआ जिस जो भी फंडिंग तो जा रहा है उसको रियल टाइम में निगरानी करते हैं, उसमें उसमें उसके ऊपर अपना रेड फ्लैग इश्यू करते हैं, जो कि साधारण दृष्टि से एक ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं है, एक आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है। बैंकर ट्रेंड होते हुए भी उनके लिए इतना इतना डिटेल्स देखना इम्पॉसिबल रहता है। और इस चीज को कि किसके किसका अकाउंट का पैसा किस वक्त कहां से अपने अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाते वक्त कोई वही म्यूल अकाउंट या दूसरे अकाउंट में पहुंच ना जाए या उसके थ्रू से कुछ ट्रांजैक्शन ना हो, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह, जो एक बहुत बड़ा हथियार साबित हुआ है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के थ्रू से, तो ये दोनों ही लोगों के लिए बहुत बड़ा जिसे कहते हैं आयामी चीज
0: जी जी जी
1: संभव होगा।
0: महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण ये जानकारी है, बड़ी उपलब्धि है AI के माध्यम से। और हमारे एक और श्रोता सोलापुर महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं हमसे, प्रकाश राउत। कहिए प्रकाश जी, क्या है आपकी जिज्ञासा?
2: मेरा यह प्रश्न है, क्रेडिट कार्ड तो अच्छा है
0: जी,
2: क्रेडिट कार्ड अच्छा होता है, पर कोई कारण से वो उसकी जी किस्त बिल होता है जो बाउंस होगा उसके ज्यादा दंड होते है, ज्यादा चार्जेस लगते है, उस पर GST बहुत लगता है, इसके रिजर्व बैंक की क्या पॉलिसी होती है, इसके क्या कारण है?
3: प्रकाश जी, ऐसा है कि क्रेडिट कार्ड में जब भी आपको काफी ग्रेस पीरियड मिलता है तो आपको जो ड्यू डेट है उस तक पूरा पैसा आपको जमा कराना आवश्यक है, अदरवाइज आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी, इंटरेस्ट है जो कि बहुत ज्यादा अमाउंट होता है। तो आपको बेटर है कि जो भी आप में क्रेडिट कार्ड की जो ड्यू डेट है पेमेंट की, उस डेट तक आप पूरा पूरा पैसा जो है बैंक का जमा कीजिए, अदरवाइज आपको पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है और ब्याज भी आपको देना पड़ेगा
0: जी। एक और सवाल हमारे पास आया है हमारे श्रोता मनोज पानसे जी का, और आप पूछ रहे हैं कि बैंकिंग में जो डिजिटाइजेशन आया है और साइबर फ्रॉड जैसी घटनाएं हो रही हैं, उससे उसके लिए क्या प्रयास हो रहे हैं, क्रेडिट पाने के लिए किस प्रकार के उपाय और प्रयास हमें करने होंगे, ये इनका सवाल।
3: ऐसा है कि जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है, अपने कोई लिंक ना खोलें जो अननोन है या OTP किसी को शेयर ना करें, लेकिन फिर भी अगर फ्रॉड हो गया है तो उसके लिए 1930 एक 1930 साइबर हेल्पलाइन है, आप उस पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। साथ ही अभी रिसेंटली ऐसा भी होने जा रहा है कि आपकी जो पेमेंट है आपको बतानी पड़ेगी कि इमीडिएटली क्रेडिट ना होके जाए, उसमें कुछ टाइम लग के आएगा, तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से काफी कुछ इसमें प्रयास किए जा रहे हैं कि कम से कम जो है लोगों को इस दुर्घटना से बचाया जा सके, फ्रॉड से बचाया जा सके, लेकिन

0: सावधानी आपको खुद को रखनी बहुत जरूरी है
1: जी। देखिए, अब एक और सवाल जो अक्सर लोग पूछते हैं इस विषय में वो ये है कि जैसे स्टार्टअप कोई अगर युवा करना चाहते हैं शुरू, तो शुभम भाई जी आपसे मैं पूछ रहा हूं, तो वो किन दस्तावेजों के साथ तैयार रहें और बैंक से लोन लेने के लिए जब वो जाते हैं इस तरह के किसी उपक्रम के लिए, तो क्या चीजें जिनका उन्हें ख्याल रखना चाहिए?
2: ये बहुत अच्छा सवाल है और सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि नए उद्यम लेकर जब हमारे युवा युवा पीढ़ी जब जाते हैं प्रोग्राम अपने अपने अपने स्कीम को साकार करने के लिए, सबसे पहले हालांकि बैंक और में मतलब ने कहा था कि बहुत सारे जैसे मुद्रा स्कीम्स हैं, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि उससे भी पहले अपना जो QR कोड है उसके जरिए उनका जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसका रिकॉर्ड लेकर अगर वो स्टार्टअप इंडिया की जो पॉसिबिलिटीज हो उसके तरफ अगर ध्यान दे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक सशक्त माध्यम आ गया है जो है UPI। दूसरा, इसी साल RBI और नीति आयोग दोनों ही एक बहुत बड़ा आयाम शुरू किए हैं, वो ये है कि मिशन डिजिटल श्रम सेतु
1: जी,
2: जो
1: जी
2: अक्टूबर 2025 से शुरू हुआ है,
1: महत्वपूर्ण है जानकारी। और शुभमोय जी, दरअसल समय की है थोड़ी सी सीमा, बहुत सुंदर आपने जानकारी दी हमारे श्रोताओं को, और हम अपने उन तमाम श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने फोन लाइन और डिजिटल माध्यम से कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आर्थिक विश्लेषक शुभमोय भट्टाचार्य जी और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व महाप्रबंधक रमेश कुमार अरोड़ा ने हमारे साथ इस कार्यक्रम में शिरकत की। आप दोनों विशेषज्ञों का भी धन्यवाद।
3: धन्यवाद
1: दोस्तों। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आपकी ये जो प्रतिक्रियाएं हैं वो हम हमेशा उनका इंतजार करते हैं, और आप हमें जरूर लिखिए AIRNSDtalks@gmail.com पर, और इसके साथ ही दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: ఆకాశవాణి విజయవాడ కేంద్రం, సమయం 11 గంటలు కావస్తోంది. మరికొద్ది క్షణాల్లో వార్తా ప్రసారం. ఆకాశవాణి ఢిల్లీ కేంద్రం నుంచి రిలే. నమస్కారం. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में 26वें वार्षिक शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की. इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों व्यापार और निवेश, ऊर्जा और रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और रूस के बीच सहयोग का नई ऊंचाइयों तक पहुंचना बहुत संतोष का विषय है. प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यह दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा.
1: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं. राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा.
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार चर्चा की है. उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और करता रहेगा.
1: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं. भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा. युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देते. हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है.
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कुछ ही दिनों में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा.
1: कुछ दिनों बाद भारत ब्रिक्स समिट का आयोजन कर रहा है. सभी भारतवासी भारत में आपका स्वागत करने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं. आपकी यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों को भी बल मिलेगा और ब्रिक्स के अंतर्गत संवाद और सहयोग भी सशक्त होगा.
0: राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं. प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पिजिश्कीन के साथ भी बिश्केक में द्विपक्षीय बैठक की. प्रधानमंत्री ने बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग हुई बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की. उन्होंने पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की. प्रधानमंत्री ने भारत के रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए. बाद में प्रधानमंत्री ने किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जाफरोव से भी मुलाकात की. दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और